प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और राष्ट्रीय औषधीय मिशन के तहत आती है। किसानों को इसका लाभ अधिक से अधिक जरूर उठाना चाहिए। और आज की जानकारी।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती के बातें, औषधीय पौधों की खेती सुनीता अग्रवाल से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड नंबर 144 वन।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंखध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं, सुनते हैं चिंतन। अति सर्वति वर्जते, आलेखम वाचन निर्मला तिवारी।

विद्वान जनों ने सब कामों में अति का विरोध किया है, उसे गलत ठहराया है। भगवान बुद्ध ने मध्यम भाग यानी मध्यम मार्ग का आचरण करने के लिए सर्व साधारण को उपदेश दिया है। बहुत तेज दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं और बहुत धीरे चलने वाले अविष्ट लक्ष्य तक पहुँचने से पहले पिछड़ जाते हैं। जो मध्यम गति से चलते हैं वह बिना थके बिना पिछड़े उचित समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। हाथी जब किसी नदी को पार करता है तो अपना हर एक कदम बड़ी सावधानी से रखता है, आगे की जमीन को टटोल कर उस पर एक पैर जमाता है। जब वह देख लेता है कि कोई खतरा नहीं है तो उस पर बोझ रख कर पिछले पैरों को हटाता है। इस गतिविधि से वह उस भारी काम को पूर्ण कर लेता है। यदि वह जल्दबाजी करे तो गहरे पानी में डूब सकता है, किसी दलदल में फंस सकता है या किसी गड्ढे में औंधे मुंह गिरकर प्राण गंवा सकता है। साथ ही यदि वह कदम बढ़ाने का साहस ही ना करे, पानी की विस्तृत धारा को देखकर डर जाए और नदी पार ही ना करे तो फिर वह कभी नदी पार नहीं कर सकता है। हाथी बुद्धिमान प्राणी है, वह अपने शरीर के भारी भरकम डेढ़ का ध्यान रखता है। नदी पार करने की आवश्यकता के अनुभव पर वह पानी के फैलाव को समझता है और पार करते समय आने वाले खतरों को भी समझता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वह अपना कार्य गंभीरतापूर्वक पूर्ण कर लेता है और जैसे ही उसे खतरा दिखता है वह अपना पैर पीछे हटा लेता है और फिर दूसरी जगह से रास्ता तलाश लेता है। मनुष्य को भी हाथी की सी ही बुद्धिमानी सीखनी चाहिए। अपने कार्यों में मध्यम गति से ही उसे आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थी कितने ही उतावलेपन करें लेकिन एक दो महीने में अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। यदि कर भी लें तो जल्दी भूल जाएंगे। क्रम क्रम से नियत काल में पूरी की हुई शिक्षा ही मस्तिष्क में सुस्थिर रहती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी वृक्ष ये सभी अपने नियत अवधि में ही परिपक्व होते हैं, फल देने लायक होते हैं और नियत समय पर ही वृद्ध होते हैं। यदि उस नियत गतिविधि में जल्दबाजी की जाए तो परिणाम बुरा होता है। हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता मनोभूमि परिस्थिति इन सभी बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। बहुत अधिक खाना यह भी सही नहीं है और बिल्कुल ना खाना यह भी सही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अति बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज की अति बुरा ही है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझ कर काम करना चाहिए। यही हमारे संतजन कहते हैं, हमारे बड़े जन कहते हैं और शास्त्रों में भी यही बात बताई गई है। कहीं ऐसी छलांग ना लगा दी जाए कि गिरकर अपने ही पैर तोड़ लिए जाएं। उतावलेपन में काम बिगड़ जाता है, इसलिए धैर्यपूर्ण सही समय का इंतजार करते हुए कार्य करना चाहिए और अति से बचना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे निर्मला तिवारी से चिंतन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम तृप्ति शक्या।

अभी आप सुन रहे थे आराधना। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं भेंट वार्ता स्वचर्चा में अस्थमा।

0: अत्रि गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
0: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
1: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूँ कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं न थी।
0: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
1: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफ़ी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
0: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
1: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है, कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
0: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
1: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूंगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं

0: लेकिन निरंतर नहीं, ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
1: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेने पड़ेगी, तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
0: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं, इन्हेलर केवल एक दवा पहुँचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है, तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदि होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपके इन्हेलर हट सकती या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए, और एक इन्हेलर खत्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आज कल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाँफता रहता है, छींकता रहता है।
0: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण कुछ भी बोलिए वायु प्रदूषण है, तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था, आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है, कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है, तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
1: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को?
0: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पे भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पे भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखिएगी।
1: घर का बना हुआ खाना ही खाइए, यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ, आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, कल एक फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, अस्थमा कारण एवं उपचार। भेंट वार्ता करते डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय रांची से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृति में समाचार अब से कुछ ही पर।

0: इदम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स् देशस्य राष्ट्रियदिवसस्य स्वर्णजयन्ती समारोहे मुख्य अतिथिरूपेण भागं गृहीतवान् भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स् देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान् विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस देशस्य समकक्षेन डॉ नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान् द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम् आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवाण्डीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं एककोटि पञ्चाशत् लक्ष रूप्यकेषु विक्रीतवान् आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीयव्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च दशदिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन् अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः षोडशे सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः
2: Mm. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और

0: सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart, Dr. Naveen Chandram Gulam, in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi will inaugurate two major solar power parks in Madhya Pradesh's Neemuch and Shajapur today. Mr. Joshi, along with Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav, will launch a 500-megawatt solar park in Neemuch and a 450-megawatt solar park in Shajapur. State New and Renewable Energy Minister Rakesh Shukla will also be present at the event. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorn Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. It added that the program will provide integrated home and community-based health care for children from birth to 3 years by merging the existing home-based newborn care and home-based care for young child programs. In Gujarat, the fourth Vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh Mandaviya, alongside key state ministers and global diplomats, will take part in the two-day conference which aims to boost industrial development in central Gujarat region. We have a report.
3: The two-day summit will host over 30 seminars with 151 experts and delegates from partner countries including Japan, Singapore, UAE, Ukraine and Rwanda. Focused on central Gujarat's economic growth, the event will focus on future-ready sectors like semiconductors, logistics, green hydrogen, quantum technology, AI in agriculture, aerospace and defense. A grand exhibition with over 150 stalls showcasing regional MSMEs, advanced tech startups and major enterprises like Amul and GFS will be one of the main highlights of the event. Aparna Khut, Akashwani News, Vadodara.
2: The United States and Iran have agreed to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. The move is aimed at resolving their dispute over the Strait of Hormuz after days of military escalation threatened to derail the fragile ceasefire. The announcement came after multiple rounds of strikes around the Strait of Hormuz. The Indian men's hockey team displayed remarkable defensive resilience to defeat England 3-2 in the penalty shootout after a hard-fought goalless draw in the reverse fixtures of the FIH Hockey Pro League in London yesterday. The win marked India's last FIH Pro League fixture before the Hockey World Cup, providing the team with a timely confidence boost ahead of the marquee tournament. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए हम आपको बता दें प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब से कुछ ही पलों में यानी 7:15 पर आप सुनेंगे पलाश लोकगीतों का कार्यक्रम मंगेश कुमार मशातियों की आवाज़ में। 7:45 पर आप सुनेंगे स्वर सरिता। 8:00 का समय होगा दिल्ली से समाचार प्रभात का। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। गीत गुंजन का समय होगा 8:45 पर। 9:00 का समय होगा जोहार पलामू का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग 9:30 पर। 10:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से। दिल्ली से आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार 10:05 पर। 10:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती उजाले उनकी यादों की। 11:00 का समय होगा रंग तिरंगा। 12:00 आप सुनेंगे यादों की महफिल हिंदी में समाचार का समय होगा दिल्ली से 1:00। 1:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। 1:20 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सुरीला सफर अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 2:00। 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में विविध भारती का समय होगा 2:30 पर मुंबई से। 2:55 पर हम चलेंगे रांची जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3:00 का समय होगा विविध भारती में सखी सहेली का। 4:00 आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में सेहतनामा मुंबई से। 5:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम

शाम 5:35 प्रासंगिक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन प्रादेशिक समाचार का समय होगा शाम के 6:00। 6:02 प्रासंगिक खेती बाड़ी ग्रामीण सभा का समय होगा शाम के 6:30 पर। 7:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:10 पर सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद कल्याणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे भेंट वार्ता। 7:45 पर 8:00 का समय होगा चितपट संगीत का। 8:45 पर हम चलेंगे दिल्ली जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 9:00 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का दिल्ली से। 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार। 10:00 का समय होगा रजनीकांधा का। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से। 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम ब्लास्ट।

ine huna mala ki mare uchi yali sandal pinde

0: सुनिए विरह रस का गीत राग जनानी झूमर में। कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा सज धज कर अपने प्रियतम का इंतजार करती है, परंतु जब कृष्ण नहीं आते हैं तो वो बेचैन होकर अपने श्रृंगार को तोड़ देना चाहती है। स्वर है जानकी देवी और साथियों का।
1: लहली लहली तारंगे, लहली लहली तारंगे, कुसुमित सारी भाई बसिया के ललकारी।

0: लोक गीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है नागपुरी लोक गीत, स्वर है जानकी देवी और साथियों का। पहले गीत में किस्म किस्म के फूलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, गेंदा, गुलाब, कचनार, जूही, बेली, कमल, केवड़ा, कनैली जैसे फूलों को देख कवि का मन आनंदित है। राग दोहरी डमकच के इस गीत को सुनिए जानकी देवी और साथियों के स्वर में।
1: धाधा की धावैया फूले, धाधा की धावैया फूले, फूल लपारा सहो, धाधा की धावैया फूले।

0: जानकी देवी और साथियों के स्वर में ही अब सुनिए एक हरिया डमकच राग पर आधारित लोकगीत। इस गीत में कवि कह रहा है, माघ महीने के आंधी तूफान और बर्फबारी ने बसंत के आगमन का संकेत दे दिया है। खिले खिले फूल, सुगंधित बयार और कोयल की कूक वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं।
1: या गेला का आंधी धुका, आ गेला का पथल पानी, आ गेला का

0: लोक गीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है नागपुरी लोक गीत, स्वर है जानकी देवी और साथियों का। पहले गीत में किस्म किस्म के फूलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, गेंदा, गुलाब, कचनार, जूही, बेली, कमल, केवड़ा, कनैली जैसे फूलों को देख कवि का मन आनंदित है। राग दोहरी डमकच के इस गीत को सुनिए जानकी देवी और साथियों के स्वर में।
1: धाधा की धावैया फूले, धाधा की धावैया फूले, फूल लपारा सहो, धाधा की धावैया फूले।

0: जानकी देवी और साथियों के स्वर में ही अब सुनिए एक हरिया डमकच राग पर आधारित लोकगीत। इस गीत में कवि कह रहा है, माघ महीने के आंधी तूफान और बर्फबारी ने बसंत के आगमन का संकेत दे दिया है। खिले खिले फूल, सुगंधित बयार और कोयल की कूक वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं।
1: आई गेलक पथल पानी, आई गेलक आई गेलक आंधी धुका, आई गेलक।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे

0: संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन, महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से

संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से

0: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 07 01123 71 07 01 01 23 71 06 और 01123 34 44। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, छह आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honor. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's

0: in the reverse fixture of the AFIH Pro League at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London yesterday. Abhishek Sheelanand Lakhra and Hardik Singh converted their shootout attempts for India in a fiercely contested encounter. Defender Sanjay, who was named player of the match, led a resolute defensive effort while both goalkeepers made important contributions in preserving the clean sheet. And in the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of the second half stoppage time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the strengthening of India's maritime footprint in Seychelles with the Prime Minister's visit. PM Modi creates history with twin firsts, writes the Times of India. The first Indian PM to address Seychelles' National Assembly and the first to be honoured with the country's highest environmental honour. Lauding the support to austerity called by citizens, Prime Minister Modi backs self-reliance in aviation and defence sectors. Quoting the Prime Minister in his monthly radio programme, Mann Ki Baat, the Asian Age writes, "From seas to skies, India is becoming secure." In a significant transformation, Army set to establish operationalize first integrated battle groups next month, headlines the Indian Express. Government to amend rules for speedy approvals for medical services, states in the Sun Times. The Statesman says Northern Railway adds 2.2 megawatt rooftop solar capacity in April-May, accelerating green energy transition. The Economic Times headlines cites foreign outflows thin down on healthier cues as cooling crude, RBI's rupee support and easing rallies at Asian rivals boost confidence in Indian markets. The dailies have also noted the missing monsoon at the heat wave back in the national capital after 40 days, with the nights and days warmest in 2 years, feeling a 50 degrees Celsius. And finally, in a first instance, Sanskrit University introduces BTech in AI and data science, providing opportunities to apply modern computational techniques to traditional domains such as Ayurveda, Yoga, Jyotish, Nyaya and other classical disciplines, states the Hindu. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour, also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgoolam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish AFIH Pro League campaign on a winning note. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव में 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज करेंगे समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 साल तक के बच्चों को घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मंत्री वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र को पूछताछ के लिए जारी किया समन। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की जताई संभावना। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड से 4 खिलाड़ियों का चयन, 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में टीम खेलेगी 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नवचयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।

0: स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने युवाओं से नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कल से शुरू हो जाएगा। इस कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चतरा जिले में कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने पत्रकारों से बातचीत की।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार पूरे राज्य में दौरा करके और सभी जिलों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है, ताकि किसी भी तरह से वोटर का नाम उस लिस्ट से नहीं कटे जो पात्र है, जो पात्रता रखता है या जो 18 वर्ष जिसका आयु हो गया है, उस आदमी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े।
0: रांची में महिला सशक्तिकरण को लेकर सामाजिक संस्था इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 325 की ओर से प्रत्युषा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया।
2: ये लोग लगातार सोशल वर्क करते हैं, स्कूल में जाके हैप्पी स्कूल बनाते हैं, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रहता है उसको दूर करते हैं। और अभी यहाँ कुछ जैसे बुके वगैरह जो दिया गया वो बच्चों के द्वारा ही बना के दिया गया, महिलाओं के द्वारा बना के दिया गया, तो लगातार ये लोग फील्ड में काम कर रहे हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब कारोबार और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने रोहित उरांव को आज तथा रामेश्वर उरांव को कल यानी 30 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। यह कार्रवाई योगेंद्र तिवारी से जुड़े शराब कारोबार मामले की जांच के क्रम में की जा रही है, जिसमें ईडी पहले भी संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। रांची के पहाड़ी मंदिर से बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 82 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा के लिए प्रस्थान करेंगे और 6 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। साथ ही वैष्णो देवी, रघुनाथ मंदिर, खीर भवानी और स्वर्ण मंदिर सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी दर्शन करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर स्थित एम्स ने पहली बार सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी कर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह जटिल सर्जरी कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉ. रजत अग्रवाल और एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के डॉ. संजय कुमार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। रांची में कल 3 दिवसीय चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 का समापन हुआ। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: रांची स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 का कल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई शिक्षाविदों, फिल्मकारों और कलाकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के कलाकार राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को देश दुनिया तक पहुँचा कर राज्य की ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सी जगन्नाथ ने युवा फिल्मकारों से झारखंड की प्राकृतिक संपदा को फिल्मों के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने कहा कि सिनेमा समाज में रचनात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम है और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समारोह में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: मॉनसून से पहले हजारीबाग नगर निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सिलसिले में महापौर अरविंद कुमार राणा ने शहर के स्कूलों समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: मैं सारे निगम क्षेत्र के विद्यालयों का करने वाला हूँ विजिट। जहाँ भी आवास होगा हमारा विद्यालय को हम ठीक करेंगे। रोड और नली तो हमारा प्राथमिकता सूची में है। हम अभी 70 नलियों का और रोडों का काम करवाने वाले हैं। टेंडर हो गया हमारा, ये हमारा विद्यालय के सामने अतिक्रमण कर लिया है और पक्का अतिक्रमण है।
0: मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। स्कूली खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI ने वर्ष 2025-26 के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। परिषद को राष्ट्रीय चयन ट्रायल एवं कोचिंग कैंप के सफल आयोजन के लिए सराहना पुरस्कार तथा 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के उत्कृष्ट आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ आयोजक श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें से 3 रांची के बरियातू स्थित CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की छात्राएं हैं और चौथी खिलाड़ी सिमडेगा की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर प्रमुख अखबारों ने पूर्व वित्त मंत्री सह कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को ईडी से मिले समन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए रोहित को आज, रामेश्वर को कल बुलाया। प्रभात खबर की हेडलाइन है, खुद कार चलाकर जोन्हा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी संग उठाया प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद। दैनिक जागरण लिखता है, SIR कल से गणना प्रपत्र लेकर घर घर पहुंचेंगे BLO। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में 17 जिलों में कुपोषण की स्थिति गंभीर, 13 लाख महिलाओं बच्चों को 3 माह से पोषाहार बंद। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेल गांव में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आज करेंगे समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 साल तक के बच्चों को घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र को पूछताछ के लिए जारी किया समन। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की जताई संभावना। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड से 4 खिलाड़ियों का चयन, 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में टीम खेलेगी 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आप

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:44 हो चुके हैं और समय हो चला है गीत गुंजन का। तो आइए सुनते हैं गीत गुंजन।

गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गाना। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे सागर पिक्चर का ये गाना किशोर कुमार और की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म दिल का ये गाना। राधा पाटवाला उदित नारायण की आवाज़ में, गीत समीर के हैं और

और इसी गीत के साथ दिल पिक्चर से हमें आगे दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।

जोहर पलामू सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता के मूल मंत्र हैं। और इसी सुविचार के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गाना।

आप सुन रहे हैं जोहार पलामू और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम का मिजाज। तो आज का अधिकतम तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 28 डिग्री। तो बातें और भी होगी मगर सुनते प्यारा सा गाना।

जोहार पलामू। जोहार पलामू।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जो हर पलाम। वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं हम स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से सचेत रहेंगे। तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे क्योंकि हमारे ये मौसम के अनुसार फल फूल तो मिलते ही हैं और बिना मौसम के भी हमें फल प्राप्त होते हैं। उसी फलों की अगर हम बात करें तो पपीता, पपीता एक ऐसा फल है जो हर घर में लगा सकते हैं हम इसे, इसके पौधे को उगा सकते हैं और इसका जो सेवन है काफ़ी अच्छा है। पपीता एक बेहतर गुणकारी फल है जो पाचन, त्वचा और दिल की सेहत के लिए काफ़ी अमृत माना गया है। इसमें मौजूद पपेन जैसे पाचन एंजाइम भोजन को जल्दी पचाने और कब्ज दूर करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। पपीता खाने के बहुत सारे फायदे हैं। पपीते में मौजूद पपेन और फाइबर पेट की गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करते हैं। यह एक लो कैलोरी और हाई फाइबर फल है जिसे खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है। एक कटोरी पपीता शरीर के दैनिक आवश्यकता के लिए के अधिक विटामिन सी प्रदान करता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इससे मौजूद विटामिन सी ए, सी और ई त्वचा को चमकदार बनाती है, झुर्रियों को कम करने में मदद करती है। यह विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का बेहतर स्रोत है जो बढ़ती उम्र में आंखों की रोशनी को सुरक्षित रखता है। इसमें मौजूद पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है जिससे हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। अगर हम बातें करें तो प्रतिदिन 150 से 200 ग्राम पका पपीता खाना पर्याप्त माना जाता है और इसी तरह से हम कहें तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम पपीते का सेवन करें और स्वस्थ रहें। हम बातें और भी करेंगे, मैं सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: जोहार पलामू।
1: और इसी गीत के साथ हमें जोहार पलामू से आगे दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर्था पिंकी कुमारी का, और संयोजक थे श्री एस के लाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
3: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की।
2: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
2: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
3: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
3: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
2: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हां
1: ले आया लकड़ी।
2: आय इतनी सी चुब्बा कहां रह गया?
3: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूं जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल। वहां बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूं इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती है। काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो
2: मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
3: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं
0: है?
3: कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: क्या भूल बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
3: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
3: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।
0: अच्छा।

0: चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
0: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यार, है? सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश सोचा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी।

0: जाएगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
1: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
2: अम्मा तो

0: नहीं, ये तो फलों से लदा है।
1: हाँ।
0: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
2: हाँ, ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी।
0: तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं, चलो।
1: अरे अरे, क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है। ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
2: अरे, बात तो तुम्हारी सच है।
0: तो अम्मा, ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
2: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
1: ये
2: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे, हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
2: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा। हैं?
2: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
0: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
2: हाँ हाँ, चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं।
3: ये देखो, ये पेड़
2: देख लो।
0: अम्मा अम्मा, वो देखो, ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा, काटे।
2: चलो इधर से निकल कर आओ।
0: अच्छा,
2: आई, क्या हुआ चुप्पा?
1: क्या हुआ?
0: अम्मा अम्मा, कांटा चुप गया। आई,
2: अरे दिखा दो।
0: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू, इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है ठीक है, नहीं काटेंगे। हाँ।
0: देखा अम्मा, कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
2: हाँ।
1: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
2: अरे नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो, हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
2: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों?
0: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
2: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
2: सचमुच, इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा, रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया, वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा, हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: तू समझ गई है?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
2: रहने दे रहने दे।

0: तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझी को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोलना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।
1: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे

0: കണ്ടു. पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं. युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे. युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव. पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे. भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में. गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे. एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी. फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा. गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया. उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है.
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिख.
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग. हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं. आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां साफ सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में.
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया. अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है.
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया. इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया. इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे. प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की. साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है. सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया. प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी।

0: इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Naveen Chandraram Gulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two Prime Ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State Union Territory Police in the evening. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. In Odisha, lakhs of devotees thronged the pilgrim city of Puri this morning as the sacred Debasnan Jatra or the Snan Jatra or the ceremonial bathing festival of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra is being observed with traditional grandeur at the Sri Jagannath Temple

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है। पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी।
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है। मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे।
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं वहां पर प्रीमियर है, तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी। तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? मेरा कुछ है 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे स्पोर्ट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनुभव कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
0: अरे
1: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये।

0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमिडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी।
0: एक 1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है उस वक्त। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह
0: फिर
1: वाह
0: एक
1: वाह,
0: सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम
1: गिर
0: लोग
1: जाते।
0: ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे, इस तरह से था। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में, किराए का घर जो था वहां पर तारा, पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं, रामा शेट्टी से पैसे नहीं दे सकता मैं, और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल। सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं और
0: हाँ
1: रातों
0: हाँ
1: रात बंदा स्टार बन
0: स्टार
1: जाता
0: बन
1: है
0: जाता है, करेक्ट
1: और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और
0: राइट,
1: यहां अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या
0: क्या
1: धमाका हो
0: हुआ
1: चुका है।
0: है, करेक्ट।
1: वाह।
0: उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहां पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने
0: उस
1: फोन आ रहे हैं
0: इतने फोन आने
1: तुम्हारे।
0: लगे, मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6 6 7 7 महीना 1 1 साल फोन आने में लग जाता था, पर
1: जी
0: बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में
0: एक्चुअली तो
1: करता
0: एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8 10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: है। गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है, कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा, हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूं, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था, मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म कि फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको

0: नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार
0: बहुत बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं है। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए। पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: थी, उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो।
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर।
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है।
0: 2003-04 की बात कह रही
1: हूँ। खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: और को दिया? चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक है, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले।
1: वाह।
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है। ये इसका ऑडियो ट्रैक है बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था। तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे। और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी, इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: समझदार थी। क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे।

0: उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी,
1: अच्छा तो उससे अंदर
0: तो उससे अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले हैं।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली। तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे
1: अच्छा।
0: ये फिल्में देखनी है, और वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी।
1: ओके।
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वा,
0: में
1: वा।
0: जहां भर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है।
1: वाह।
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं, उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफकोर्स, तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना, तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसठ है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे, तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुंदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गए, डॉक्टर अनिल अवसठ हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे।
1: वाह वाह।
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे। लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले इस तरह के सारे लोग थे, तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है।

0: तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी, टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे. जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में एक छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे. और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे. तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह
0: मैं इनके
1: वाह,
0: साथ बैठ के खाऊंगा. तो दादी कहते थे कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा. सबको खिलाते थे. और
1: हाँ
0: मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बे में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था.
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है.
1: हमेशा कोई ना कोई होता था।
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता
1: क्या बात
0: था.
1: है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे। तो मुझे लगता है यहां बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा
0: हाँ
1: जल्दी आ जाना सात समुंदर
0: हाँ
1: पार से।
0: श्योर.
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निरो फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरों,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निरो फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
0: नाटक करके, जो
1: नाटक
0: जिसका जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही।
1: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब,
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
1: हाँ हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो पापा ने कहा जरूर क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए। और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स, डॉक्टर लागू, निरो फुले, पापा, तनुजा।

0: कमर्शियल सिनेमा की
1: कमर्शियल
0: बड़ी एक्ट्रेस.
1: हाँ हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे.
0: वाओ.
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे. सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे. और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे.
0: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
1: बहुत ही
0: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
1: तो
0: के हिसाब से.
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है. और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ. इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की. इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे. हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है. मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड. और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया. तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं. तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे. इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था. और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था. बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे. तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया.
0: गजब.
1: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो. तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम. तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे. तो पापा ने कहा ठीक है. उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था. तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए.
0: क्या बात है.
1: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी. उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम. और ये बहुत बड़ी बात है और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है. तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए. तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है.
0: क्या बात है.
1: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो, ठीक है क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया. और इसमें मुझे मजे की बात यह लगती है कि

0: भी दे पाए, इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग. और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट
1: क्या बात,
0: कि इस घर में मैं
1: बिल्कुल.
0: पैदा हूँ.
1: चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: वो बताएं.
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया. प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा, रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं? मैंने कहा क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है. तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है? ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था. और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी. राइट. सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो. मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो. मम्मी कहा अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ.
1: लो.
0: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी. तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं. मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में. दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था. इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में. और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती. पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे. तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था. तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर. और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं. पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था. तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे. और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है. बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली. तो पापा ने कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर. तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है. और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया. तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह. वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है. तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से. उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का. उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है, पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया. और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे. तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया, देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था. वो किस्सा इस तरह से कुछ हुआ
1: था. और किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है.
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी. पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे. इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे. तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता
0: उन्हें
1: था.
0: बहुत करीब से देखी हुई थी.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था.
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाना सुनते हैं, दो आंखें बारह हाथ का, ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ऑफ कोर्स।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानुलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। तुम बिन टू फिल्म से इसे हमने लिया, अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में यह अगला गीत।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अजीज ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गजल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीता फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संकेत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ अभी तो जी लें। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन। और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिमान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मधुरोह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आंखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आंखियों के झरोखों से इस फिल्म से गीत आपने सुना। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

पूछो प्यार से देखो।

jahan

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज।

0: दौलत वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
2: राइट।

0: अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का

मिदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। बीएलओ घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र। 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा। 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रुपए। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा आईआईएम अहमदाबाद। पायलट स्टडी के बाद राज्य भर के लिए तैयार होगी रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। राजधानी रांची में आयोजित समारोह में एक छात्रा द्वारा रीइंबर्समेंट और 15 लाख रुपए की ऋण सीमा का मुद्दा उठाए जाने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि योजना की कमियों को दूर किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर ऋण सीमा बढ़ाने पर भी विचार होगा। इधर कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गई है, इसलिए सफलता के लिए खुद को आगे रखने की जरूरत है।
1: यही जनरेशन जो है वो आने वाले समय में हमारे समाज को, हमारे देश को आगे लेके जाने वाली है। इनको उस लायक भी बनना होगा, उस लायक बन सकते हैं ये लोग, जहाँ ये लोग देश का नेतृत्व कर पाए सभी सेक्टर में। मुझे विश्वास है और भरोसा भी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे ये।
0: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कल से होगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र सही ढंग से भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को लौटाना होगा।
2: आने वाला इनमेशन फेस 30 जून से 29 जुलाई तक होंगे। कमीशन का इंस्ट्रक्शन पूरा स्टेट में, पूरा कंट्री में एक ही है, इसलिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसेस नहीं। आपका कहां तक डॉक्यूमेंटेशन का संबंध है, कमीशन का बहुत ही इंस्ट्रक्शन क्लियर है, इनमेशन फेस में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है।
0: शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी से समन मिलने के बाद राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। समन के अनुसार पूर्व मंत्री को आज अपने पुत्र रोहित उरांव के साथ एजेंसी के कार्यालय में पेश होना था। ईडी ने संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागजात के साथ दोनों को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा हो गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने नए बिजली कनेक्शन के लिए संशोधित शुल्क सूची जारी कर दी है, जो पहली मई से लागू है। नई दरों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 1 किलोवाट के घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 4825 रुपए का भुगतान करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के कारणों का अध्ययन अब भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद करेगा। देश में पहली बार किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान ने इस विषय पर अध्ययन का प्रस्ताव दिया है। पहले चरण में गोला और गोमिया को पायलट अध्ययन के लिए चुना गया है और वन विभाग और IIM की टीम क्षेत्र का दौरा भी कर चुकी है। दोनों संस्थानों के बीच जल्द MOU होने और अध्ययन शुरू किए जाने की उम्मीद है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF वन्य प्राणी रवि रंजन ने बताया कि इस अध्ययन से मानव हाथी संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकेगा। धनबाद में जल्द ही 4 नए टाउन हॉल का निर्माण किया जाएगा। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिले की आबादी को ध्यान में रखते हुए नए टाउन हॉल की जरूरत महसूस की जा रही थी।
3: धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज्यादा जैसी संख्या हुई, तो कोई भी अच्छा हॉल, जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया। उसके सामने जो IB बंगलो है, उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उसका भी रिनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा, तो वो भी हम लोग यूज करेंगे।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों के आकलन का जायजा लिया गया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार एक नई पहल की गई है। देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि पहली बार श्रावणी मेले के दौरान टोटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है।
4: सावन में भीड़ को देखते हुए हमने टोटो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि भीड़ में ये टोटो एम्बुलेंस आसानी से चला जाए और वहाँ पे जो भी आवश्यकता होगी उनको वहाँ से लेके हम टेंडर निकाले हैं। कुछ दवाइयाँ भी रहेगी, अगर हल्का फुल्का होगा तो निकटवर्ती सेंटर में उनको ले जाएंगे, अगर विशेष दिक्कत होगी जिसमें हम लोग सदर अस्पताल छूटेगा।
0: रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। जहां आज देव स्नान यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे और इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिन के अनासर यानी एकांतवास में चले जाएंगे। 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सुबह 4 बजे पूजा आरती के बाद दोपहर 2:30 बजे विग्रहों को रथारूढ़ कर शाम 5 बजे रथ संचालन शुरू किया जाएगा। रथ शाम 6 बजे मौसीबाड़ी पहुंचेगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार।

सरकार, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। बीएलओ घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र, 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा, 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रुपए। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा आईआईएम अहमदाबाद, पायलट स्टडी के बाद राज्यभर के लिए तैयार होगी रणनीति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज। दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे एक और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं। राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें। किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना। दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे। सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए। ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे हैं कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज टीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस टोली के आदमी हैं हम, तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं, उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें। और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहां अपना रिश्ता होता है वहां ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूट कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे

0: होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हों, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हों, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप? ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं, तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे? दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।
5: ए दिल।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज से। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल की वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें, लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं उसी को यहाँ उजागर करेंगे, तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत जरूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है, जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, समल जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। ये हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज़ में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी एक और साथी कह रही है कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारे एक और साथी कह रही है कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की। काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे। सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज़।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे। आज पापा उम्र के उस दौर में हैं, वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हैं, मैंने तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूं, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूं। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं ये कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम

में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए किसने लिखा ये गीत।

जालीनोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जाजा मेहंदी अली खां के बोल, ओपी नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कहने कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

0: पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरामतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
5: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट के रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
6: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक

0: बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर अवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने दिन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीतकार की जिनकी कलम ने कई सुंदर गीत लिखे। 1 अक्टूबर 1932 को कानपुर में इनका जन्म हुआ और इसी गंगा जमुनी तहजीब के माहौल में उनका बचपन बीता। स्कूल के दिनों से ही इन्हें शायरी और कविता लिखने का शौक था। फिर आगे चलकर ये एक बड़े फनकार

जी हाँ श्रोताओं, शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ गौहर कानपुरी साहब की। बचपन से ही इन्हें गीत और उर्दू शायरी लिखने की दीवानगी थी। यही दीवानगी इन्हें कानपुर से मुंबई लेकर गई, पर सपने पूरे करने का रास्ता आसान नहीं था। मुंबई पहुंचकर इन्होंने सालों तक संघर्ष किया। करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1967 में पहला ब्रेक मिला। फिल्म प्यार की बाजी में अपना पहला गाना लिखा। संगीतकार जिमी के डायरेक्शन में इन्होंने हसीनों का दीदार करना बुरा है टाइटल से एक कव्वाली लिखी जो बहुत मशहूर हुई। गौहर साहब उर्दू शायरी से प्रेरित थे और फिल्मी गीतों में इसकी खुशबू भर देते थे। कानपुर से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, पर इनकी कलम कभी रुकी नहीं। तो चलिए सुनते हैं फिल्म जख्मी से इनका ये दिल को छू लेने वाला गाना।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।
4: T-A-T, cat. Cat माने बिल्ली।
5: R-A-T, rat. Rat माने चूहा।

G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडो स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने

0: शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी द्वेष भाव से दूर रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।
1: यहाँ पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है, नियुक्ति पत्र आपको दिए जा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर हो, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरण को जन्मने ना दें, पनपने ना दें, जहां हम एक दूसरे को एक अलग अलग नजरों से देखें।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिले के भूली बस्ती स्थित मतदान केंद्र संख्या 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय तथा मतदान केंद्र संख्या 210 गुरु नानक मध्य विद्यालय पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्य योजना की समीक्षा की। वहीं दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन के साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले के वेयर हाउस का निरीक्षण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि शिक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। CBSE ने कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के जिन छात्रों ने पहले ही दो विदेशी भाषाएं चुन ली है, उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दरवाजा आज से श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया। मान्यता है कि पूर्णिमा के स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अस्वस्थ माने जाते हैं। बोकारो स्टील सिटी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान को 108 कलश पवित्र जल से स्नान कराया गया। मंदिर के पुजारी लंबोदर उपाध्याय ने बताया कि इसके बाद वे करीब 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है।
2: दुनिया में जहां भी जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर ये कार्यक्रम होता है। इसके बाद 15 दिन अभी उनका दर्शन साधन ग्रंथालय के नहीं रहेगा। पंक्तियों के दर्शन के लिए आप मंदिर नहीं वो आ जाएंगे भक्तजनों के पास। रथ यात्रा के दिन पहले नवयुवन दर्शन होता है, यह शुभ माना आता है।
0: सरायकेला खरसावां जिले में देवस्थान पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा लगभग 300 वर्ष से अधिक पुरानी धार्मिक परंपरा का निर्वहन श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ उनके अग्रज बलभद्र एवं बहन सुभद्रा का पारंपरिक शाही स्नान संपन्न कराया गया। परंपरा के अनुसार नगर के 7 जलाशयों से एकत्रित पवित्र जल से भगवान का महाअभिषेक किया गया। हजारीबाग के मिशन अस्पताल के पास कल देर रात एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे मौजूद कई लोगों को अपनी चपेट में लेने के बाद बिजली के पोल और चापाकल में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 6 से अधिक लोग घायल हो गए जबकि कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुनुआ चक्रधरपुर मुख्य मार्ग पर आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक घंटे आधारित शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा निश्चितपुर स्कूल के पास हुआ जहां सड़क पर जा रहे शिक्षिका को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है जिसे पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है। मौसम। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद से ही हो रही बारिश से तापमान में कमी आई है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये
3: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना।
4: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
3: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
4: जी,
3: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल हाँ। रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
4: जी।
3: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
4: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है, जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की, और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह। जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूजकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या, मतलब 15 दिन पहले
3: हाँ उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहाँ पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, है ना नेहा
4: जी। बिल्कुल, बधाइयाँ हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
4: भाई देखिए, तो तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
3: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
4: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे, एक आज की कसर।
0: जी
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज है, केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
4: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
3: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
3: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
3: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है। पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
2: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
3: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
0: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
5: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा

0: और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
1: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे, निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा। चेहरा फक हो गया, झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
2: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
3: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहां भी चलते हुए।
2: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहां पाया?
0: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
2: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
0: मुझे मेज पर नहीं मिला।
2: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूं, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आने चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
1: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
4: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
7: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
6: जी।

0: तो मंजरी जी, सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए।
1: भाई बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है,
0: जी
1: और विशेष रूप से युवाओं और युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी, क्लब, रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा
0: जी
1: सकता है, ना ही ये हो सकता है, और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे
1: बिल्कुल
0: संबंधित और बातें करेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली, और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की,
0: हाँ।
1: तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर
0: हाँ।
1: ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते
0: जी।
1: लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो
0: जी।
1: लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए।
0: हाँ।
1: और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और नेहा जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसकी वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी कि संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है। और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए। यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है। तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं। यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुनाई ही दी है।
0: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की
0: भाई,
1: बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी, है ना
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी।
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो, जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो
1: हाँ
0: यह है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आदतें और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है, और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो
0: बिल्कुल,
1: सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं, एक खास
0: बिल्कुल,
1: उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें
0: बिल्कुल,
1: स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी अच्छा
1: सफल
0: है।
1: है
0: और दोनों को
1: जी।
0: पहल करनी पड़ती है इस
1: हाँ
0: रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी में नेहा एक दूसरे का हाथ
1: हाँ
0: थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का सम्मान समान सम्मान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी
1: जी
0: जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए। ये
1: जी
0: नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है
1: जी
0: ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक छोटी सी
0: हाँ,
1: बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना
0: बिल्कुल,
1: जरूरी है, और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरदारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है,
0: क्या बात
1: और
0: है
1: वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है नेहा।
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती हैं, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं, अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं। लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि

0: ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना, और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही
1: बिल्कुल
0: अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर पे जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां
1: पूरे
0: रहना है,
1: समय देना
0: जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो
1: जी
0: कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
1: दे
0: उन
1: दिए
0: पर,
1: जाए तो वो घबरा
0: तो एक
1: जाते हैं।
0: घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक
1: बिल्कुल,
0: मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
1: और सब लोग देखो उम्मीद भी
0: हाँ
1: लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि
0: जी
1: ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों
0: जी
1: पे
0: जी
1: खरी
0: जी जी
1: उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा।
0: जी
1: और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: कि सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला
1: जी।
0: संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते ही, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो
1: जी
0: कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप
1: जी
0: सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है,
1: जी
0: तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इसे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या
0: बिल्कुल
1: ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र
1: विवाह को अच्छी
0: है
1: तरह से
0: जी।
1: बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे।
0: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
1: बिल्कुल

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए. अच्छा,
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना.
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको, आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए।

0: एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूनें जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना। और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको
1: हाँ,
0: नमक, जिसको फीकी लगेगी वो कहेगा ना ये क्या बना
1: तो
0: दिया।
1: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग आधा छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक का आपके स्वाद के अनुसार। अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे, सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़ कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गरमा गरम आलू की सब्जी तैयार है, कचौड़ियां तो बन ही चुकी हैं। तो
0: बिल्कुल।
1: आप दोनों ये सारी चीजें खाइए, और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए,
0: हाँ
1: छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को
0: बिल्कुल
1: मिलाकर खाइए।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो
1: तो
0: अब
1: बस हम
0: कार्यक्रम से
1: चले,
0: लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
1: हाँ, तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज़्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता।
0: जी
1: एक दूसरी बात ये भी हमारे है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गेन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, 2 से 3 दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। 1-2 दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
0: जी, तो ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पर काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
0: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए,
0: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
0: क्यों
1: अल्सर।
0: हो रहा
1: ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
0: जी
1: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं,
0: जी
1: और एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खास तौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा।
0: जी
1: कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
0: जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम

0: ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है। सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। जो कि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं,
1: जी
0: जो हम सिंपल टर्म्स में, देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: पड़े?
0: कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही?
0: दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
1: हाँ
0: है?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी और एक बात डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज, खास तौर से जो योगा करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए।
0: ओके
1: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए। मेरे
1: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना क्वाइट फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
0: जी,
1: और
0: क्या
1: काफी
0: बात
1: सुना
0: है
1: है हमने।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर?
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ, तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं, जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
0: जी
1: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, एक छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है, जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब, ये गाना।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
2: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
2: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है। तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपना हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
2: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। हाँ। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
2: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है, तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी जी जी, और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
2: बिल्कुल
1: तो,
2: बिल्कुल
1: या फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है तो? हाँ,
2: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है, एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल पेशेंट को पूछ के हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ द फूड पाइप द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे। धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो तंबाकू खाओ तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं, ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है आपने दूसरी बीमारी डाली है तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लीवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
2: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता है, ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
2: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
2: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
2: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले, अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या तो, कुछ नहीं?
2: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
2: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज अ सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है, इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
2: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो
1: लगान का,
2: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रही ये तेल अच्छा है, ये ले ले, इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाइज है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: स्टीरॉइड भी आ रहा है
1: स्टेरॉइड्स
0: आजकल
1: भी
0: आप
1: आता
0: बता
1: है।
0: रहे हैं।
1: और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है, उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है।

कुछ ऐसे गाने जिनकी कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते नगमे।

तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं। वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

0: परा।
1: गानों का अपना नशा होता है, जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली बिसरी याद।

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूं तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:35 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे घर आंगन। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारियां। साथ ही चर्चा में सुनेंगे महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वार्ता में सुनेंगे घर की अंत सज्जा। वार्ताकार होंगी नेहा सिन्हा। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, जिसे आप रांची केंद्र से सुन सकेंगे। 6:02 पर किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम सुनेंगे खेती बाड़ी। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और साथ ही चर्चा में सुनेंगे गर्मा मूंग की खेती में कीट प्रबंधन। भेंट वार्ता सुनेंगे सुगर पालन। वार्ताकार होंगे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम सुन सकेंगे ग्रामीण सभा। समय होगा 6:30। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी पशुओं के लिए आहार व्यवस्था। आज की बात में सुनेंगे अंतर

बढ़ती खेती से लाभ। भेंटवार्ता में सुनेंगे बरसाती सब्जियों की खेती। भेंटवार्ताकार होंगे कृषि विशेषज्ञ अभिषेक पटेल और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

रात्रि के 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आज के फनकार सुन पाएंगे विविध भारती से। 10:00 हम वापस आएंगे अपने स्टूडियो में फिल्मी गीतों को लेकर और कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 11:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का। हमेशा की तरह रात्रि की 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। नीचे प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों, उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, बारिश के इन बूंदों से। तो चलिए, इतने अच्छे मौसम में हम इसका आनंद लेते हैं, प्यारे प्यारे गीत का। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

बहनों, आज के इस भागम भाग जिंदगी में अधिकांश महिलाओं को घर से निकलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आर्थिक दबाव के कारण उन्हें घर से बाहर निकलना जरूरी होता है। और आज अधिकांश जो महिलाएं हैं किसी न किसी रूप में घर से बाहर निकल रही हैं और आय के स्रोत को बढ़ा रही हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो महिलाएं जो हैं वे घर के सारे जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। घर में छोटे बच्चे होते हैं, सास ससुर होते हैं, नंदे वगैरह होती हैं और भी बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। तो इन सभी घर के जो सदस्य हैं उनकी भी देखभाल करनी होती है और साथ में अपने बच्चों की भी देखभाल करनी होती है। समय पर उन्हें स्कूल भेजना होता है, उन्हें लंच बॉक्स तैयार करना होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो साथ में बैठकर उन्हें पढ़ाना लिखाना होता है। तो इस प्रकार से घर की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें तो निभाना ही होता है, चाहे वो घर से बाहर जाए या ना जाए। घर की ये जिम्मेदारियां तो जो है घर में वो काम कभी ख़त्म नहीं होती। घर के बहुत सारे काम होते हैं, उन सभी कामों का निपटारा करना, घर में सभी सदस्यों का देखभाल करना, और यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन पर तो विशेष ध्यान देना ही पड़ता है। उनके खान पान, अगर उनके जो सेहत संबंधित कोई अगर उनमें प्रॉब्लम है तो उनका भी विशेष देखभाल करनी होती है, समय पर दवा देना, समय पर खाना देना इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से देखा जाए तो काम का जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म नहीं होता। और यदि घर से बाहर निकलना हो तो फिर सुबह से ही एक रूटीन जो है वो काफ़ी भागम भाग हो जाती है। सभी कामों को निपटाते हुए उन्हें अपने काम पे ड्यूटी में भी जाना होता है, और इस प्रकार से जब वो थक हार के घर पे आती है तो यदि कोई उनके सामने एक कप चाय गर्मा गर्म अगर परोस देता है तो फिर देखिए उनकी सारी थकान मिट जाती है। तो कहने का मतलब ये है बहनों कि घर में कोई तो होना चाहिए जो उनकी भी मन की स्थिति को समझे, उनके मन की भावना को समझे कि वो भी थक के आई है तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। दो शब्द मीठे जो है मीठे बोल के भी आवश्यकता होती है ताकि उनके जो भी थकान है वो दूर हो जाए। तो इस प्रकार से घर में अगर अन्य सदस्य होते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा सास ससुर ननदे वगैरह भी होती हैं, तो यदि घर के सारी जिम्मेदारियां सभी मिलजुल कर बांट ले तो फिर ये जो काम इतना जो बड़ा देखने को लगता है बहनों, वो निश्चय ही आपस में मिलजुल कर लेने से वो काम इतना बड़ा नहीं होता, बल्कि हाथों हाथ हो जाता है। तो इसमें

एक घर के सदस्यों की जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी भूमिका होती है। घर के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि एक अकेली जो नारी है वो इतना सारा काम कैसे कर पाएंगी, और साथ में जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यदि वो घर में अन्य सदस्य तो उनका भी विशेष ध्यान रखे। तो इस प्रकार से यदि किसी भी घर में अगर संयुक्त परिवार होता है तो फिर काम इतना आसानी से हो जाता है देखते देखते हर काम कि कुछ भी जो है पता ही नहीं चल पाता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो महिलाएं आज जो अकेले रहती हैं शहरों में और उन्हें भाग भाग के जाना होता है सारे काम को निपटाते हुए, तो उनके लिए ये जो स्थिति होती है वो बहुत ही उनके लिए चिंतनीय होती है कि घर के सारे कामों को भी निपटाना है, आगे बच्चों को भी देखना है, उनके लिए खाना भी बनाना है, तो सचमुच में उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार हो वहाँ ये सब बहुत ही आसानी से होता है हो जाता है। बच्चे भी पल पड़ जाते हैं आसानी से, उन्हें भी देखभाल करने वाला कोई होता है। तो इस प्रकार से अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो जरूर निकलना भी चाहिए। समय की मांग है कि हर महिलाएं घर से निकलती हैं काम पे जाती हैं, तो इतना ही बस उन्हें चाहिए कि घर में कोई उन्हें समझने वाला हो, हाथ बटाने वाला हो, इसी से उनकी जो सारी थकान है वो दूर हो जाती है। तो चलिए बहनों, इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

0: इस गीत के बाद बहनों चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, नेहा सिन्हा की। वार्ता का शीर्षक है घर की अंतः सज्जा।
1: की अंतः सज्जा दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे सुंदरता, शांति और मॉडर्नाइजेशन का मिलान एक साथ हो जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आजकल हर तरफ डिमांड में है। दुनिया के हर कोने में यह अपनाई जा रही है। आज के युग में लोगों का चाव बढ़ता जा रहा है अपने घर और ऑफिसेस को सुंदर बनाने में। वे ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि उनका घर सुंदर दिखे और लोग उसकी तारीफ करें। यहाँ तक कि घर और ऑफिसेस का अट्रैक्शन ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग की वजह से बढ़ता जा रहा है और यह दर्शाता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का महत्व आजकल के दैनिक जीवन में। इंटीरियर डिज़ाइनिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि घर में कैसे हम फर्नीचर्स को एडजस्ट करें। घर को स्पेशियस बनाने के लिए हम डिज़ाइनिंग को यूज़ कर सकते हैं और इससे हमें अपना घर काफ़ी साफ और खाली खाली लगता है और हमें फील होता है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें घर में मिली हैं हम उनका आसानी से प्रयोग कर पा रहे हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग से हमें घर की सभी वस्तुओं एवं चीज़ों को एक विचारधारा के तहत देखते हैं। जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं वे एक दूसरे नज़रिए से सोचते हैं और देखते हैं, क्योंकि अपनी पढ़ाई और वर्क एटमॉस्फेयर की वजह से वे टेक्निकली इसका आंकलन करते हैं। अलग अलग तरह के घरों और जगहों को डिज़ाइन करने से या देखने से हमें सहायता मिलती है अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में। डिज़ाइनर्स जो भी कार्य करते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें ताकि उनकी काम की सराहना की जा सके। घर की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है मॉडर्नाइजेशन के इस्तेमाल करके। उसके लिए अपने बेडरूम्स, किचन्स और टॉयलेट्स को करीने से डिज़ाइन करें और सुंदर टाइल्स, हाइलाइटर्स और दीवारों की रंगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक कला है और इस कला की घर की स्त्रियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। इस कला के द्वारा हम अपने आसपास की सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं। यह हमारी पर्सनालिटी और डेली लाइफ को दर्शाता है। कोई भी अगर चाहे तो अपने घर को सुंदर बना सकता है अगर अपने घर के अपीयरेंस में थोड़ा सा बदलाव ला सके। सारी वस्तुओं का रखरखाव ठीक से करें, यहाँ तक कि जब आप फर्नीचर्स खरीदें तो उनके रंगों का चुनाव भी सोच समझ कर करें। अपने फैमिली के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें लें और सारी चीज़ों के रंगों का विशेष ख्याल रखें। जब भी आप फर्नीचर्स, पर्दे, कारपेट लें तो हमेशा क्वालिटी का भी ख्याल रखें। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए उस वस्तु के प्रति जो आप खरीदें अपने घर के लिए। डिज़ाइन एक बहती नदी की तरह होता है जो समय समय पर बदलता रहता है। हमें वैसी ही चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक भी हों और जिनसे घर की सुंदरता भी बढ़ सके। घर की इंटीरियर डिज़ाइन ऐसे होनी चाहिए जो खुद में एक कहानी दर्शाए उन लोगों की जो उस घर में रहते हैं। एक घर प्रतीक होता है हमारी आशाओं और इच्छाओं का। घर का डिज़ाइन हमारी खुद की आइडेंटिटी व्यक्त करता है। घर में हारमोनियस डाइवर्सिटी तभी मिल सकती है जब हम इस

0: मूल मंत्र है बैलेंस, जो स्टाइल और फंक्शनैलिटी के बीच में किया जाना चाहिए, फैशन और आराम को ध्यान में रखकर। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आइडिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे आने वाले अतिथि के मन में, क्योंकि जब कोई अतिथि या रिश्तेदार हमारे घर आते हैं तो वे हमारे घर की साज सज्जा और सुंदरता से ही प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर हम घर में किचन के डिज़ाइनिंग की बात करें तो यह घर की महिलाओं पर निर्भर करता है, और अगर वो चाहें तो अपने हिसाब से इसका संयोजन कर सकती हैं। किचन की डिज़ाइनिंग हमेशा उस घर में रहने वाली महिलाओं के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करना या करवाना चाहिए। घर में सजावट के लिए यूज़ की जाने वाली हर छोटी चीज़ का कनेक्शन इंटीरियर डिज़ाइनिंग से होता है, जैसे कि पेंटिंग्स, प्रिंट या फोटोग्राफ्स घर की दीवारों की सुंदरता बढ़ाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने घर की सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं। बिना पैसे खर्च किए बस छोटे छोटे बदलाव की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर जो कला है वो ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाली उस कला की प्रशंसा करे एवं अपने घर में वे भी इस टेक्निक को ट्राई करें। कोशिश करें कि घर में जितनी भी वस्तुओं का इस्तेमाल करें सबका पैटर्न सेम रखें, उनमें डिज़ाइंस का फ़र्क दिखाएं ताकि एथेस्टिक लुक आ सके, और जब भी आप अपने घर की डिज़ाइनिंग देखें तो आपको फ्रेश फील हो। एक ही तरह के रंगों के अलग अलग टिंट्स एवं शेड्स यूज़ करें ताकि एक रंग से आपके बोरियत महसूस ना हो। सही रंगों के चुनाव से हमेशा पॉजिटिविटी रहती है और साथ ही एनर्जी कंजप्शन भी कम होता है। घर में इस्तेमाल होने वाले कर्टन्स और ड्रेपरीज का भी चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, इससे हमारे रूम्स को सुंदरता और बढ़ जाती है। कर्टन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कमरों की आउटलाइनिंग और लुक प्रदान करने में। कर्टन्स वे होते हैं जो हमारे विंडो लेंथ तक के लिए बनाए जाते हैं, और ड्रेप्स फ्लोर लेंथ के होते हैं, उनमें फ्लैनल लाइनिंग ज़्यादा होती है। या फिर अगर कमरे में रोशनी कम आती है तो आप सैश कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सिर्फ लाइट फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये ज़्यादातर अनलाइंड होते हैं और कमरे को नया लुक प्रदान करते हैं। कारपेट सबसे आसान और वर्सेटाइल आइटम होते हैं घर के डेकोरेशन के लिए। रग्स और कारपेट्स का इस्तेमाल फ्लोरिंग के लिए किया जाता है। ये कमरों के ज़मीन की सुंदरता बढ़ाते हैं, साथ ही अकूस्टिक मटेरियल का खर्च कम कर देते हैं। टेक्सचर्ड रग और शैगी रग्स कारपेट रूम में सॉफ्टनेस लाते हैं। जिन रूम्स में ज़्यादा वुडन और मेटल आइटम्स होते हैं और ज़्यादातर कारपेट और रग्स नेचुरल चीज़ों द्वारा बनाए जाते हैं, यह हमारी सहायता करते हैं ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने में। अंतःसज्जा या इंटीरियर डेकोरेशन आज के समय में मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, और आने वाले समय में इसका प्रचलन और बढ़ता जाएगा। घर हो, ऑफिस, मॉल्स, शॉप्स, बिल्डिंग्स, गार्डन्स, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, हर जगह इंटीरियर डिज़ाइनिंग की आवश्यकता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे जगह भी बचाई जा सकती है और सुंदरता को भी प्रोत्साहन मिलता है। अगर सारी वस्तुओं को ठीक से संयोजित किया जाए और एक प्लान लेआउट के तहत घर में रखा जाए तो घर में कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि घर भरा हुआ है और फर्नीचर्स और बाकी चीज़ें भी हैं। घर की महिलाओं को चाहिए कि वे अपने कला को उभारें और वस्तुओं के चुनाव पर विशेष ध्यान दें। वैसी चीज़ें लें जो अच्छी भी हों और जिनसे घर की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। अगर घर में जगह कम हो तो हमेशा मल्टी स्पेस सेविंग फर्नीचर्स खरीदें और उनके रखरखाव का विशेष ख्याल रखें। घर में रहने वाली महिलाएं ही अपने घर को सुंदर एवं स्वच्छ बना सकती हैं। हर महिला अंदर से एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, बस ज़रूरत है इस कला को बाहर निकाल कर दर्शाने की।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता घर की अंतः सज्जा, वार्ताकार थी नेहा सिन्हा, और चलिए सुनते हैं एक और गीत।

0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
1: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 274 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, 768 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा विज्ञान विषय के सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करें। झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन पर पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और उनके बेटे ने ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। बोकारो जिले में उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिला समन्वय समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति तथा आरसेटी की समीक्षा बैठक में कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा जिले के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी बैंकों को अपने प्रदर्शन में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। साहिबगंज वन प्रमंडल द्वारा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मोती झरना में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के दौरान वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों तथा वन सुरक्षा समिति के सदस्यों ने मोती झरना परिसर की व्यापक साफ सफाई की और लगभग 1 टन कचड़े का वैज्ञानिक ढंग से निष्पादन किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जून का महीना बीतने को है और अभी तक मानसून लगभग नदारद सा है, जबकि हमारे बहुत सारे किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई करने में उन्हें विलम्ब हो रही है और ऐसे में उन्हें मानसून पर पूर्णतः निर्भर रहना भी उचित नहीं है। श्रोताओं, उन्हें चाहिए हमारे किसान भाइयों को कि वे खाली न बैठें और इसके जगह पर कृषि में बदलाव लाते हुए मोटे अनाज की बुआई करें या फिर दलहनी में मूंग की बुआई करें। मूंग की जो फसल है श्रोताओं, हमारे देश में विशेष स्थान रखता है। हमारे देश में मूंग का उत्पादन खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में होता है। मूंग में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि मिट्टी की सेहत के लिए भी ये फायदेमंद है। मूंग की फसल से फलियों को तोड़ने के बाद हल से चलाकर फसल को पलटकर मिट्टी में दबा देने से ये हरी खाद बन जाती है और ये खेतों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। मूंग की खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। मूंग की खेती यदि सही तरीके से की जाए तो इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। मूंग की फसल में विभिन्न चक्र में अनेक प्रकार के रोग लगने की संभावना भी बनी रहती है श्रोताओं, तो यदि इन रोगों की पहचान समय पर नहीं किया गया और नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल से नुकसान भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि मूंग की फसल में लगने वाले मुख्य कौन कौन से रोग हैं। तो इसमें मुख्य रूप से पित्त चितेरी रोग, येलो मोजिक वायरस जिसे कहते हैं, पर्ण व्यंग कुंचन रोग यानी लीफ क्रिंकल, चूर्णी फफूंद रोग और एंथ्रोक्नोज यानी रुक्ष रोग। तो आइए बारी बारी से हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। बात करते हैं पित्त चितेरी रोग की। तो पित्त चितेरी रोग मूंग की फसल में लगने वाला मुख्य रोग है। पित्त चितेरी रोग में पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और वह झड़ने लगता है। पित्त चितेरी रोग के कारण मूंग की फलियां पूरी तरह नहीं बन पाती और जिस कारण मूंग का उत्पादन कम हो जाता है। संक्रमित पौधे में फूल एवं फलियां देर से व कम लगते हैं और पित्त चितेरी रोग के लक्षण पौधे व फलियां दोनों पर ही दिखाई देने लगते हैं और यह रोग होता है सफ़ेद मक्खी से। तो ध्यान रहे श्रोताओं कि यह रोग सफ़ेद मक्खी से फैलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि पित्त चितेरी रोग के लक्षण दिखते ही ऑक्सीडेमेटॉन मेथाइल का 0.1% या डाईमेथॉइड का 0.3% प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 3 से 4 बार छिड़काव करें और खेत एवं मेड़ों में से पूर्ण फसल अवशेष, खरपतवार एवं संक्रमित पौधों को निकालकर अलग कर लें और उसे नष्ट कर दें। रोग अवरोधी मूंग प्रजातियों का बुआई करें, जैसे कि LGP 407, ML 267 इत्यादि जो मूंग के किस्में हैं इनका बुआई करें। अब हम बातें करेंगे पर्ण व्यंग कुंचन रोग यानी लीफ क्रिंकल। पर्ण व्यंग कुंचन रोग एक महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोग है और पर्ण व्यंग कुंचन रोग बीज द्वारा फैलता है। कुछ क्षेत्रों में ये रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा भी फैलता है। इसके लक्षण सामान्य रूप से फसल बुआई से 3 से 4 सप्ताह में दिखाई देने लगते हैं। इस रोग में दूसरी पत्ती बड़ी होने लगती है और पत्तियों में झुर्रियाँ व मरोड़ बनाने लगता है। संक्रमित पौधे को खेत में दूर से ही देखकर पहचाना जा सकता है। इस रोग के कारण पौधे का विकास रुक जाता है जिससे पौधे में नाम मात्र की फलियां लगती हैं और यह रोग पौधे की किसी भी अवस्था में अपनी चपेट में ले सकता है। इस रोग से नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि ये रोग पौधे के बीज द्वारा फैलता है, इसलिए रोगी पौधे को उखाड़ कर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। पर्ण व्यंग कुंचन रोग को से फसल को बचाने के लिए बुआई के 15 दिन बाद या रोग के लक्षण दिखने पर इमिडाक्लोपीरिड का छिड़काव करें तो इससे उस पर राहत मिलती है। अब हम बातें करेंगे चूर्णी फफूंद रोग की। इस रोग में पौधे की पत्तियों के निचले हिस्से में छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में एक बड़ा सफ़ेद धब्बा बन का आकार ले लेता है। रोग के बढ़ने के साथ ही ये सफ़ेद धब्बे पत्तियों के साथ साथ तना, शाखाओं व फलियों पर भी फैल जाता है। चुन्नी फफूंद रोग गर्म या शुष्क मौसम में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि रोग प्रतिरोधी प्रजातियां जो मूंग की है उसका बुआई करें, जैसे कि LVG 17, LVG 402 और इत्यादि, TRM 1, PUSA 9072 इत्यादि का प्रयोग करें। चूर्णी फफूंद रोग के प्रकोप से पौधे को बचाने के लिए घुलनशील गंधक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चूर्णी फफूंद रोग का प्रकोप ज़्यादा होने पर आवश्यकता अनुसार कार्बन डाइजिम या कैराथेन को पानी में घोलकर मूंग की फसल पर छिड़काव करें। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एंथ्राक्नोज, जिसे कि रुक्ष रोग भी कहा जाता है, एंथ्राक्नोज जो है, इस रोग के कारण फसल की पैदावार व गुणवत्ता में कमी आ जाती है। उत्पादन में लगभग 20-60% तक की कमी आ जाती है। 26-30 डिग्री सेल्सियस तापमान या बादलयुक्त मौसम में इस रोग का प्रमुख कारण होता है। इस रोग से नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वह स्वस्थ प्रमाणित बीजों का चयन करें। बुआई से पहले बीजों को थीरम अथवा कैप्टॉन द्वारा 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा कार्बन डाइजिम का 0.5 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित कर ही बुआई करें। एंथ्राक्नोज रोग के लक्षण दिखने पर 0.2% जिनेब अथवा थीरम का छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर भी छिड़काव कर सकते हैं। यदि इस पर राहत नहीं मिलती है तो आप इसे दोहरा सकते हैं 15 दिनों पर। अब हम देखते हैं मूंग की फसल में होने वाले प्रमुख कीट रोग। तो मूंग की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम बातें करेंगे सफ़ेद मक्खी और माहू कीट की। सफ़ेद मक्खी और माहू पौधे की पत्तियां एवं फूलों के रस चूसते हैं। यह कीट पत्तों एवं हनी उत्सर्जित करते हैं, जिसे पौधे की पत्तियों पर एक काली परत बन जाती है, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही प्रकार से नहीं हो पाती और सफ़ेद पीली जो मक्खी मोजेक वायरस को भी फैलाती है। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए रोगर या डाइमोथोएट का इस्तेमाल करें। पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें तो इस पर नियंत्रण हो सकता है। उसी प्रकार से जैसिड हरा फुदका रोग भी होता है, और जैसे कि इस कीट के बच्चे एवं बड़े दोनों पत्तियों एवं फूलों का रस चूसते हैं। भारी प्रकोप होने पर पत्तियों में रस चूसने के कारण वे मुड़ जाते हैं और फूल गिरकर उससे उत्पादन पर उसका असर पड़ता है। तो इस समय रहते इस पर भी रोकथाम करें। तो श्रोताओं, सबसे पहली बात है कि आप हमेशा निगरानी करते रहें और जैसे ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तुरंत उसका निराकरण करें, तभी आपको उसका अपने मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिल पाएगा। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। सुकर पालन, इस पर जानकारी देंगे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: महत्व, श्रोताओं, सुकर एक ऐसा पशु है जो गंदगी के अंबार में रहते हुए गंदे चीज़ों को अपना आहार बनाते हुए भी स्वस्थ रहता है। इस अवलोकन को विषय वस्तु बनाकर वैज्ञानिकों के शोध से यह स्पष्ट तौर पर उभर कर आया है कि सुकरों में बीमारी से लड़ने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। सुकर के इसी महत्व की वजह से इसे रक्त से सीरम निकालकर एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के बचाव हेतु प्रतिरोधक औषधि बनाने का कार्य किया जा रहा है। कई जीवन रक्षक औषधियाँ भी सुकर से बनाई जा रही हैं, जैसे इंसुलिन, एड्रेनालिन, गोनेडोट्रोपिन आदि। इसलिए बड़ी दवा कंपनियों में भी सुकर की मांग बढ़ी है। श्रोताओं, सुकर से अल्प समय में बहुत अधिक मांस प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा पशु है जो वर्ष में 2 बार बच्चा देती है एवं एक साथ कई बच्चे को जन्म देती है। साथ ही इसका शारीरिक वृद्धि दर भी अधिक है। सुकर मांस का पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होना, सुकर मांस खाने वालों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होना, सुकर मांस का उपभोक्ता बाजार में मांग के अनुपात में आपूर्ति का कम होना, झारखंड वासियों में परंपरागत रूप से सूकर पालन करना अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आय का एक साधन होना, मिश्रित खेती के अनुकूल सूकर का निवास स्थान तालाब के बांध पर बनाया जा सकता है। सूकर पालन की आवश्यकता क्यों? श्रोताओं, हमारे देश में सूकरों की उत्पादन क्षमता विश्व के अन्य विकसित देशों से काफ़ी कम है, जिसका मुख्य कारण अच्छी नस्ल के सूकर का न होना, वैज्ञानिक विधि से पालन करने की अज्ञानता, अच्छी नस्ल के पशुओं को खरीदने, उसके आहार, आवास एवं प्रबंधन पर खर्च करने हेतु धन का अभाव। सूकर पालन ही एक ऐसा व्यवसाय है श्रोताओं, जो हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग का रूप ले सकता है। जरूरत है उन्नत नस्ल के सूकरों की आपूर्ति कर सरकार एवं बैंकों द्वारा आर्थिक सहयोग, खाने के खर्च का कम करना एवं प्रशिक्षण द्वारा आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी लेना। सूकर एक अत्यंत उपयोगी पशु है, जिसकी आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसे खाद्यान्न आपूर्ति एवं औषधि निर्माण आदि। बेकार खाद्य पदार्थ जो अन्य पशु उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे होटल का या मेस की जूठन सामग्री, खाद्य पदार्थों से निकले बेकार पदार्थ, लोकल शराब से बचे अवशेष का समुचित उपयोग कर सूकर उनकी खपत करने में सहयोग करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को आहार की आपूर्ति में सहयोग कर कृषि क्षेत्र में अनाज उत्पादन पर दबाव को कम करता है। अब आइए आपको बताएं सूकर पालन में खर्च एवं आमदनी। जी हां श्रोताओं, सूकर पालक नई प्रजाति TND के एक सूकरी को पालकर एवं उसके बच्चों की बिक्री कर प्रतिवर्ष एक सूकरी से औसतन 15,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक कृषक बहुत ही आसानी से अकेले 15 सूकरियों को पाल सकता है, जो प्रत्येक माह की मजदूरी से बहुत अधिक है। ग्रामीण मजदूरों को प्रतिदिन काम मिलना संभव नहीं है, जिसके चलते बहुत से ग्रामीणों को दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ता है। ऐसे में अपने गांव में रहते हुए किसान प्रतिमाह 2 से 3 हज़ार रुपये की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवसाय से वे सालों भर कार्यरत भी रहेंगे और इसका समुचित लाभ भी पा सकते हैं। सूकर पालन से लाभ। जी हां श्रोताओं, सूकर पालन कम लागत और पूंजी से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सूकर आवास की व्यवस्था एवं प्रबंधन का खर्च अन्य पशुओं की तुलना में काफ़ी कम है। सूकर पालन से बहुत कम समय में आमदनी होने लगती है, क्योंकि मादा सूकर 6 से 8 माह की उम्र में ही वयस्क हो जाती है और एक समय में एक साथ 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है। 2 से 3 माह की उम्र में सूकर के बच्चों को बेचकर धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक सूकर बच्चे से हमें 15 से 2 हज़ार रुपये का लाभ मिल सकता है। सूकरों के प्रजनन में श्रोताओं अल्प समय का अंतराल रहता है, जिस कारण एक मादा सूकरी वर्ष में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। इस कारण हमें एक वर्ष में 16 से 24 बच्चे प्राप्त होते हैं, जो वयस्क होने पर प्रजनन कार्य हेतु उपयोग में लाए जाते हैं या स्थानीय बाजारों में बेच दिए जाते हैं। श्रोताओं, नर सूकर 6 से 8 माह की उम्र में औसतन 70 से 80 किलोग्राम के हो जाते हैं। मांस के लिए तैयार प्रत्येक नर सूकर को स्थानीय बाजार में बेचने से 6,000 से 7,000 रुपये तक का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। श्रोताओं, सूकर की शारीरिक वृद्धि दर भी ज़्यादा होती है। एक सूकर प्रतिदिन 0.5 किलोग्राम के हिसाब के वजन से वृद्धि करता है, इसलिए सूकर ही एकमात्र ऐसा पशु है जिसे बहुत ही कम समय में सस्ता और पशुजनित मांस प्राप्त होता है। सूकर में खाद्य परिवर्तन की क्षमता अत्यधिक होती है, जहां अन्य पशुओं को 1 किलोग्राम मांस बनाने के लिए 10 से 12 किलोग्राम भोजन देना पड़ता है, वहीं सूकरों को मात्र 2.5 किलो से 3 किलोग्राम भोजन पर्याप्त होता है। सूकर मांस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन विटामिन पाए जाने के कारण यह पौष्टिक भी होता है। आहार सस्ता होने की वजह से गरीब एवं निर्धन वर्ग को कुपोषण से बचाव करता है। सूकर का मांस स्वादिष्ट होने के कारण इससे कई पदार्थ अथवा व्यंजन बनते हैं, जिसकी स्थानीय एवं राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक मांग है। मांग के अनुपात में मांस की आपूर्ति नहीं के बराबर है, इसलिए इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का भविष्य अच्छा है। सूकरों में मांस प्राप्ति की मात्रा शरीर की वजन की 70-80% होती है, जो कि अन्य पशुओं की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। श्रोताओं, सूकर बेकार खाद्य पदार्थों जैसे होटल या मेस की जूठन सामग्री, खाद्य पदार्थों के कारखाने से निकले पदार्थ, हड़िया बनाने के बाद बेकार बची सामग्री, जंगली फल, घास, खराब दाना इत्यादि का उपयोग कर पौष्टिक मांस में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। श्रोताओं, अन्य व्यवसाय जैसे दूध और अंडा उत्पादन की वजह तरह ही पूरे दिन सूकर पालन में देखभाल की जरूरत नहीं रहती है। एक विकसित बड़ा सूकर साल भर में करीब 1 टन खाद दे सकता है। स्थानीय मूल्य के हिसाब से खाद बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। सूकर खाद का उपयोग खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी आप कर सकते हैं। मछली पालन वाले तालाब में सूकर का खाद का उपयोग करने से मछलियों में भी तेजी से वृद्धि होती है। सूकर के बच्चों की खरीदारी आप कहां से करेंगे? श्रोताओं, एक लाभकारी परियोजना के लिए एक नर सूकर बच्चा के साथ 10 मादा सूकरी का योजना आप बना सकते हैं। इनकी खरीदारी करते समय इनके माता पिता की प्रजनन क्षमता, बच्चों की संख्या, मांस की गुणवत्ता, बीमारियों से बचने की क्षमता एवं वजन में वृद्धि दर की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सूकर बच्चा सरकारी दर पर राजकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र कांकी रांची 6 से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको बता दें सूकर की उन्नत नस्लें। हमारे देश भारत में मिलने वाले सूकर प्रायः देशी नस्ल के सूकर होते हैं। ये आकार में छोटे, वजन में कम तथा अपेक्षाकृत कम बच्चे देते हैं। खाना के अनुपात में इनके वजन में वृद्धि नहीं होती है। इन सूकरों से मांस का उत्पादन भी बहुत कम होता है तथा ये बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त भी होते हैं। ऐसे सूकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं होते हैं। संपूर्ण विश्व में लगभग 60 नस्ल के सूकर पाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश भारत की जलवायु तथा वातावरण में व्यावसायिक रूप से 6 नस्लों के सूकर जैसे लार्ज हाइट, यॉर्कशायर, टैमवर्थ, हेम्पशायर, रशियन चरमुखा, TND और लेंडरेस ही लाभकारी साबित हो रहे हैं। इस तरह से किसान भाइयों, यदि आप खेती किसानी के साथ ही साथ अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने हेतु कुछ पशुपालन जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सूकर पालन, गाय पालन, भैंस पालन इत्यादि का व्यवसाय अपनाकर अपने जीविका आसानी से चला सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करके अपने एवं अपने परिवार के अन्य जरूरी चीज़ों का पोषण कर सकते हैं। इससे आपको घर के उपजे हुए अनाज औने पौने दाम में नहीं बेचने पड़ेंगे और आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा एवं अन्य तरह के जरूरी के काम निपटा सकते हैं और आपका समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता। शुक्र पालन, इस पर जानकारी दे रहे थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। अब चलिए श्रोताओं, हम विस्तार से जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है और हमारे किसान भाइयों के लिए किस प्रकार से लाभदायक योजना है। तो श्रोताओं, हम बता दें कि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और खेती की सफलता काफ़ी हद तक सिंचाई पर निर्भर करती है। आज भी देश के कई क्षेत्रों में किसान वर्षा पर आधारित खेती करते हैं। समय पर पर्याप्त पानी न मिलने से फसल उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है और किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे और उपलब्ध संसाधनों का कुशल एवं वैज्ञानिक तरीके से उपयोग हो। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल, इसका नारा था। इसका अर्थ है कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाई जाए और पानी की प्रत्येक बूंद का अधिकतम उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त की जाए। इस योजना के मुख्य उद्देश्य से इस प्रकार से श्रोताओं, हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, भू जल स्तर को बनाए रखने के लिए जल का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे कि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना, सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली तकनीकों को अपनाना। तो इस योजना के मुख्य घटक है हर खेत को पानी। इसका उद्देश्य उन खेतों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना है जहां अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए नहरों का विस्तार, खेत तालाब चैक डैम कुएं और अन्य जल स्रोतों का विकास करना है। प्रति बूंद अधिक फसल का उद्देश्य है इस घटक के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। इस तकनीक से पानी की काफ़ी हद तक बचत होती है और फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। तीसरा है जलागम विकास। इसका उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण, मिट्टी का कटाव रोकना तथा जल संसाधनों का विकास करना ताकि भविष्य के लिए पानी जो है वो संरक्षित करके रखा जा सके, सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो पाती है और पानी की बचत हो पाती है। इस योजना का जो लाभ है हमारे किसान भाइयों के लिए यही लाभ है कि इससे पानी की बचत हो पाती है, फसल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार हो पाता है, उर्वरकों का बेहतर उपयोग होता है, बिजली और डीजल की लागत में कमी होती है, सूखे की स्थिति में भी खेती करना आसान हो जाता है और किसानों की आय में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ बागवानी सब्जी फल उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बचत 40-70% तक हो पाती है। स्प्रिंकलर सिंचाई के फवारे की तरह खेत में पानी का छिड़काव किया जाता है और ये तकनीक विशेष रूप से हल्की भूमि और असमान खेतों के लिए होती है। आज जल संकट एक गंभीर चुनौती बन चुका है, इसलिए प्रत्येक किसान को खेत में मेड़बंदी, वर्षा जल संचयन, खेत तालाब निर्माण करना, पानी के विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना इत्यादि इत्यादि उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि अधिक से अधिक जल संरक्षण हो सके और भविष्य की खेती उतनी ही सुरक्षित रह सके। तो श्रोताओं, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये केवल एक योजना नहीं है बल्कि जल संरक्षण और कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और यदि पानी की हर बूंद का सही उपयोग करें तो आधुनिक सिंचाई तकनीक को जरूर अपनाएं, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत।

शारदा सिन्हा के स्वर में गाए इसी लोकगीत के साथ श्रोताओं, अब हमें दे इजाज़त कार्यक्रम खेती बाड़ी से, लेकिन जाने से पहले एक नज़र डालेंगे आज के मौसम के मिजाज पे। तो श्रोताओं, आज डाल्टनगंज शहर का तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ अब हमें दे इजाज़त कार्यक्रम खेती बाड़ी से। नमस्कार।

0: कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार, जोहार। श्रोताओं, आज किस ग्रामीण सभा के तहत चर्चा में आप जानेंगे पशुओं के लिए आहार व्यवस्था। साथ ही साथ आज की बात का विषय है अंतर्वर्ती खेती के लाभ। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कृषि विशेषज्ञ अभिषेक पटेल से ली गई भेंटवार्ता। विषय है बरसाती सब्जियों की खेती और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। और आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं पशुओं के लिए आहार व्यवस्था। जी हाँ श्रोताओं, पशुपालन हमारे जीवन या फिर हमारे कृषि के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि पशु से ही हमें दूध, मांस, ऊन, साथ ही साथ कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए और अन्य कार्यों के लिए इन पशुपालन के तहत पशुओं का ही उपयोग किया जाता है। तो वैसे स्थिति में इन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार देना आवश्यक हो जाता है। पशु को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही उचित मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खनिज मिश्रण के साथ साथ स्वच्छ पानी का देना आवश्यक है। और इन चीज़ों को जब हम संतुलित मात्रा में देते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो स्वास्थ्य है अच्छा रहता है, उनमें रोगों की संभावना कम होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ श्रोताओं उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जरूरी है पशुओं के लिए वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से आहार का व्यवस्था करना और यह बहुत ही जरूरी है। श्रोताओं, यदि हम संतुलित आहार के महत्व की बात करें तो संतुलित आहार के अंतर्गत पशु की आयु, उसका वजन, उसकी उत्पादन क्षमता तथा कार्य के अनुसार ही आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में देना जरूरी है। संतुलित आहार से कई तरीके से फायदे मिलते हैं। दूध एवं मांस के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। पशु स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है और बछड़ों का विकास भी तेजी से होता है। और इन सब चीज़ों से निश्चित रूप से पशुपालन से हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। पशुपालन के आहार के रूप में भी देखा जाए तो हरा चारा काफ़ी एक महत्वपूर्ण और उत्तम आहार माना जाता है। इसमें विटामिन, खनिज लवण के साथ साथ प्रोटीन जो है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। हरे चारे से दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। और हरे चारे के रूप में यदि हम बात करें श्रोताओं तो बरसीम, नेपियर घास, ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया के साथ साथ ओट ये प्रमुख हरे चारे के रूप में जाने जाते हैं। वहीं सूखे चारे के रूप में यदि हम बात करें तो गेहूं का भूसा, धान का पुआल, ज्वार एवं बाजरे का सूखा चारा इसमें शामिल है, क्योंकि ये रेशेदार होते हैं और इनसे पशु का पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। सूखे चारे के साथ साथ हरा चारा देना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं श्रोताओं दाना का। जी हाँ श्रोताओं, दाने में ऊर्जा और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होती है। इसमें मक्का, जौ, चोकर, सरसों खल्ली, सोयाबीन की खल्ली, मूंगफली खल्ली के साथ साथ दालों का जो चूरा है वह शामिल होता है। अधिक दूध देने वाले पशु को यह जो दाना है अतिरिक्त मात्रा में देना जरूरी हो जाता है। पशु के शरीर की वृद्धि, उनके हड्डियों की मजबूती और दूध उत्पादन के लिए खनिज मिश्रण के साथ साथ साधारण नमक जरूरी है। प्रतिदिन 30 से 50 ग्राम खनिज लवण और 25 से 30 ग्राम नमक होना आवश्यक होता है। श्रोताओं, साथ ही साथ पशु को हमें स्वच्छ पानी देना अनिवार्य है, क्योंकि पानी पशु आहार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। एक दुधारू गाय या भैंस को प्रतिदिन करीबन 50 से 80 लीटर स्वच्छ पानी की जरूरत होती है और गर्मी के दिनों में इन्हें पानी की और भी आवश्यकता बढ़ जाती है। श्रोताओं, तो स्वच्छ पानी इन्हें जरूर दें। साथ ही साथ कई अन्य पशु की अगर हम बात करें, जिसमें कि बछड़े की आहार की बात करें, तो बछड़े के लिए है कि जन्म के तुरंत बाद ही बछड़े को माँ का पहला गाढ़ा दूध खीस जरूर दें, क्योंकि यह रोगों से लड़ने में सहायक होता है। उसके पश्चात धीरे धीरे हरा चारा, दाना और स्वच्छ पानी देना शुरू कर दें। वहीं दुधारू पशु के लिए संतुलित मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा और दाना दें। प्रायः प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन होने पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना उपयुक्त माना जाता है। वहीं यदि पशु गर्भित है, गाभिन है, तो गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में पौष्टिक और संतुलित आहार देना जरूरी कर दें। इससे स्वस्थ बछड़े का जन्म होता है, प्रसव के बाद पर्याप्त दूध भी प्राप्त होता है। श्रोताओं, वहीं यदि कार्य करने वाले पशु हैं, जिसमें कि बैल हो, घोड़े हो या अन्य कार्यशील जो पशु हो, उनके कार्य के अनुसार ही ऊर्जा युक्त दाना के साथ साथ पर्याप्त चारा भी दे। श्रोताओं, चारा उत्पादन का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि पशु को पूरे वर्ष हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए खेत में चारा फसलों की खेती भी करनी चाहिए। खरीफ में ज्वार, बाजरा, मक्का और लोबिया, और वहीं रबी में बरसीम और ओट की खेती लाभदायक होती है, और वहीं बहुवर्षीय के लिए नेपियर घास भी पूरे वर्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। तो श्रोताओं, इस तरह से देखा जाए तो इन चारों का एक विशेष महत्व हो जाता है। और साथ ही साथ श्रोताओं, जब भी आप चारा देते हैं, उनके आहार की व्यवस्था करते हैं, तो कुछ बातों का भी ख्याल रखें। पशु को नियमित समय पर भोजन दे, फफूंद लगा, सड़ा गला, गंदा चारा ना दे। आहार में अचानक परिवर्तन ना करें, चारा काट कर खिलाने से बर्बादी कम होती है। खुरली और पानी की टंकी भी साफ रखें और मौसम के अनुसार आहार और पानी की मात्रा में बदलाव करते रहे। श्रोताओं, संतुलित आहार के कई लाभ हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। इससे सर्वप्रथम दूध के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, दूध की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर हो जाती है, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रजनन क्षमता जो है सो बढ़ती है, उपचार न होने वाले खर्च भी कम होते हैं और पशुपालन से अधिक लाभ प्राप्त होता है। श्रोताओं, तो देखा जाए श्रोताओं, तो पशु के लिए उचित आहार का व्यवस्था करना एक सफल पशुपालन की मुख्य आधार है। हरा चारा हो, सूखा चारा हो या सांद्र आहार हो, खनिज मिश्रण हो के साथ साथ स्वच्छ पानी हो, इन सभी चीज़ों का संतुलित तरीके से उपयोग करने से ही पशु स्वस्थ, उत्पादक और रोग मुक्त रह सकते हैं। किसान भाई हमारे वैज्ञानिक तरीके से चारा का उत्पादन करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं और संतुलित आहार का प्रबंधन अपनाते हैं, तो दूध और अन्य पशु के उत्पादकों में वृद्धि के साथ साथ निश्चित रूप से उनके आय में भी बढ़ोतरी होती है। प्रत्येक पशुपालक को पशुओं की आयु, उनका वजन और उत्पादन क्षमता के अनुसार से ही संतुलित आहार उपलब्ध कराना जरूरी है। तो श्रोताओं, इस तरीके से यदि देखा जाए तो हम संतुलित आहार की व्यवस्था कर अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं और उनसे उत्पादन भी हम बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें पशु के लिए आहार व्यवस्था, और अब आइए सुनिए सुनते हैं कृषि विशेषज्ञ चियाकी के अभिषेक पटेल से लेकर भेंटवार्ता। विषय है बरसाती सब्जियों की खेती और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: कार्यक्रम किसानवाड़ी में ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें सब्जियों की खेती की। जी हाँ किसान बंधु, सब्जियां झट पट आमदनी देती हैं, नकदी फसलें हैं, हम बहुत जल्द इससे मुनाफा प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गढ़वा, पलामू, लातेहार में बृहद पैमाने पर सब्जियों की खेती की जाती है। हमारे जो भी सीमांत किसान हैं, जो हमारे मध्यम वर्गीय किसान हैं, वो सभी सब्जियां की खेती करते हैं ताकि उन्हें बेहतर मुनाफा जितना जल्दी हो सके प्राप्त हो सके। आज सब्जियों की खेती पर विस्तृत बातें जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के विशेषज्ञ अभिषेक पटेल जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताया जाए कि अभी हमारे ग्रामीण भाई लोग किन किन सब्जियों की खेती करेंगे, उसके उन्नत प्रभेद क्या हैं, लगाने की दूरियाँ क्या होंगी।
2: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी बरसात का मौसम आ गया है, किसान भाई अभी जैसे कि बैंगन, भिंडी, लौकी, करेला, कोहड़ा, नेनुआ, झींगी, बोदी, तमाम प्रकार के सब्जियां लगा सकते हैं। जैसा कि आप बैंगन को ले लीजिए, बैंगन में जैसे उन्नत प्रभेद जैसे है स्वर्ण शक्ति है, स्वर्ण अजय है, बिरसा चियांकी बैंगन है, स्वर्ण मोहित है। अब इसका लगाने के लिए पहले इसका नर्सरी किया जाता है। बैंगन का नर्सरी जैसे कि एक आता है आपका पपेट, या तो उसको आप थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लिया जाए 10 से 15 सेंटीमीटर, उस पर लगभग 100 से 150 ग्राम सीड गिरा दिया जाता है बेड बना के। उसके बाद उसको 15 से 20 रोज के बाद बैंगन को लगाया जाता है। जब बैंगन लगाने लगते हैं खेत में तो उसकी दूरी कम से कम पौधे से पौधे 60 एवं लाइन से लाइन की भी दूरी 60 रखना चाहिए। इसमें खाद के अगर देखेंगे तो जो कि जैविक खाद में लगभग 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद हो गया, और बाकी DAP यूरिया पोटास का अगर अनुपात देखा जाए तो 200, 150, 100।
1: अच्छा, कब कब देंगे
2: ये? लगाने के समय दिया जाता है, उसके बाद निश्चित अंतराल पे लगभग 15 रोज 20 रोज के बाद थोड़ा थोड़ा करके उसको 3-4 भाग में डिवाइड करके डालना होता है। और जैसा कि अभी बारिश है तो पानी के आवश्यकता नहीं है। अगर बारिश जैसे कि हफ्ता 10 रोज नहीं बारिश हुआ तो आवश्यकता अनुसार उसकी सिंचाई भी हल्की करनी चाहिए।
1: अच्छा।
2: और साथ में जैसे कि बैंगन में बहुत ही ज़्यादा दो रोग कीट का प्रभाव आता है, एक आता है फली छेदक, एक आता है तना छेदक,
1: वही जो काना कर देता है।
2: जी जी। तो जैसे तना छेदक के लिए आप रोग जो है उसमें कीड़ा लगता है, उसके लिए आप अगर जैविक रूप से अपनाना चाहते हैं तो नीम का तेल आता है और जीवामृत आता है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप रासायनिक जो है उसमें जैसे कि आपको कोराजन हुआ, लोकल नाम कोराजन हुआ, या इमिडाक्लोरपीड हुआ, या क्यूराक्रॉन हुआ, इसका आप 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। तो और दूसरा का आता है कि गलन, जैसे कि अभी बारिश में क्या है कि पानी इकट्ठा हो जाएगा तो आपका गलने लगता है पौधा, उसके लिए थोड़ा सा मेड़बंदी करके पानी का निकासी बनाया जाए। अगर उसके बाद भी अगर गलन हो रहा है तो उसमें आता है एक आपका मैंकोजेब, उसका छिड़काव करना चाहिए जिससे कि गलन कम हो। अगर दूसरा का अगर हम देखते हैं तो अगर हम भिंडी का, भिंडी जैसे कि अभी लगाने का सबसे उपयुक्त समय है जून जुलाई में लगता है। अब भिंडी में अगर हम प्रभेद उन्नत प्रभेद का अगर जानकारी लें तो जैसे कि आता है प्रभनी क्रांति, राधिका, अर्क अन्ना। अब इसका सीड रेट लगभग 2 से 2.5 kg प्रति हेक्टेयर के दर से लगता है
1: जी।
2: हाँ, अगर स्पेसिंग अगर इसका देखा जाए तो लाइन से लाइन जो स्पेसिंग है 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो होता है लगभग 20 सेंटीमीटर। किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत ही नज़दीक में लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जो ब्रांचिंग होता है, ब्रांचिंग नहीं हो पाता है तो फल जो उसका उपज होता है उपज में घटोत्तरी हो जाता है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जिससे काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान होता है। अब अगर बात किया जाए इसमें NPK की तो NPK एज डिजिट जैसे कि बैंगन में आप डाल रहे हैं सेम वही प्रोसेस है।
1: अच्छा
2: जी। उपज में अगर इसका औसतन उपज देखा जाए तो लगभग 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है उपज
1: बैंगन
2: इससे, क्या बोलते हैं, भिंडी से
1: जी।
2: बैंगन में तो लगभग 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर के करीब मिल जाता है, जो कि अभी मार्केट में जैसे कि बारिश लगातार हो रही है तो इसका रेट भी बहुत अच्छा है मार्केट में।
1: हाँ।
2: 40 से 50 रुपये KG
1: अभी चल रहा है
2: अभी चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि लर में जैसे अभी लगाने का सीजन है, लौकी हो गया, करेला हो गया, कोहड़ा हो गया, नेनुआ हो गया, झींगी हो गया, ये सब हमारे लरदार हैं। घर में गांव में माए बहने क्या करते हैं कि एक घर के चारों तरफ घेरा बना के उस पर जगह जगह लगा देती है, जो कि चढ़ाव करके घुरान पे लगाती हैं लर पे
1: जी।
2: और उस पर क्या रहता है कि एक आपका सुरक्षा भी हो जाता है, साथ साथ हमको सब्जियां भी मिल जाता है उसमें। अगर हम लगाना चाहते हैं जैसे कि लौकी हो गया, करेला हो गया, कोहड़ा हो गया, नेनुआ, झींगी, अब जैसे कि अगर हम लौकी के देखते हैं, लौकी का जो उन्नत प्रभेद है काशी बहार, पूफा नवीन, काशी गंगा, ये हमारा लौकी का उन्नत प्रभेद है। इसका जो लगाने का सीड रेट है लगभग 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर का है।
1: अच्छा
2: जी। और अगर इसका स्पेसिंग का लगभग देखें तो एक पौधा से दूसरे के पौधा के बीच की दूरी लगभग 3 मीटर की दूरी पे लगाना चाहिए।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जी। और इसका औसतन उपज देखेंगे तो 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उपज दे देता है।
1: अच्छा।
2: जी। और इसमें जो कि रोग लगता है, इसमें लर वाले में रोग बहुत कम ही लगता है, थोड़ा बहुत लगता है तो फली छेदक लगता है।
1: अच्छा
2: जी। इसके लिए आप इमिडाक्लोरोपीड हुआ, या तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, केवल कीराक्रान का, या तो क्या बोलते हैं क्रोजन हुआ, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं लगभग 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। अब बात करें हम अगर नेनुआ का, नेनुआ जो कि हमारा उसका हाइब्रिड अगर उन्नत प्रभेद देखेंगे तो पूसा सुप्रिया और लॉन्ग ग्रीन वाइट करके आता है, जो कि सफेद में, हल्का से सफेदी में रहता है नेनुआ।
1: ये उन्नत प्रभेद तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं?
2: हाँ, ये उन्नत प्रभेद जो कि हमारे नजदीकी जो ये क्या बोलते हैं खाद बीज के दवा के दुकान है वहाँ से मिल जाएगा।
1: अच्छा
2: जी। और प्रयास करिए कि उन्नत प्रभेद जो भी हो एक रेप्यूटेड कंपनी या रेप्यूटेड उसका ही लीजिए, जिससे कि आपको किसानों को होता क्या है कि बाजे बार बहुत ही आजकल फ्रोजरी में दूसरा दे दिया जाता है, तो उससे बचिए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे नेनुआ के, नेनुआ का अगर सीड रेट के देखा जाए तो इसका 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर लगता है।
1: अच्छा।
2: अगर इसका स्पेसिंग देखें, मतलब पौधा से पौधा की दूरी, तो लगभग इसका 2 से 2.5 meter।
1: अच्छा।
2: एक पौधा से दूसरा पौधा, और इसका लगभग औसतन उपज 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दे दिया जाता है।
1: अच्छा।
2: अगर हम बात करें झींगी का, तो झींगी में आपका आता है फोन मंजरी, सपुतिया, पूफा नफदार, ये इसके तमाम प्रकार के वेराइटी उन्नत प्रभेद हुआ। इसका सीड रेट लगभग 2 से 2.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है।
1: जी, दूरी भी वही होनी चाहिए?
2: दूरी नहीं, दूरी इसका कम है, इसका अच्छा। दूरी 1 से 1.5 meter दूरी लगता है।
1: अच्छा
2: जी। क्योंकि इस लौकी और इसके क्या बोलते हैं नेनुआ या कोहड़ा हुआ, इससे इसका जो पौधे की लंबाई होता है इसका थोड़ा सा कम होता है।
1: अच्छा,
2: अच्छा। जी। इसका औसतन उपज 80 से 150 या 120 ऐसे औसतन उपज इसका दे जाता है।
1: अच्छा, खीरा की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे आप?
2: खीरा का अगर बात करें तो खीरा में जैसे काचिली लॉन्ग हो गया वाइट, और इसका CO2 हो गया, ये खीरा का उन्नत प्रभेद है। इसमें क्या है कि सीड रेट इसका कम लगता है, इसका 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर में लगता है। और इसका स्पेसिंग भी, इसका स्पेसिंग कम रहता है, इसका स्पेसिंग लगभग आप रहता है लाइन से लाइन लगभग 1 meter, पौधे से पौधे में लगभग 60 cm।
1: अच्छा
2: जी। इसका औसतन उपज 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिल जाता है।
1: अच्छा
2: जी। अब एक हमारा लर में आता है जैसे कि करेला, करेला भी अभी लग रहा है। अब किसान भाई अगर खेत में लगा रहे हैं, अभी जैसे बारिश है, तो बारिश में अगर मचान बना के लगाते हैं तो हमारा फल हमारा सुंदर और स्वच्छ रहता है, जो कि मार्केट में हाई वैल्यू में देता है। किसान भाई लर वाली फसलें को जमीन पे रहता है तो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे कि मार्केट में उसका वैल्यू उचित नहीं मिलता है। अगर मचान बना के लगाएंगे तो उसमें क्या है कि फसल की सुरक्षा भी बढ़ेगा, प्लस उसमें रोग कम लगेगा, जो कि मार्केट में ले जाएंगे तो उसका हाई वैल्यू में बिकेगा। अगर हम बात करें कि बोदी का, जैसे अभी बोदी का भी लगाने का है, तो बोदी में जैसे उन्नत प्रभेद हो गया काशी श्यामल, काशी गौरी, CP4, फण सेता, इसका जो पौधे से पौधे की दूरी है 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी लगभग 75 सेंटीमीटर। इसका सीड रेट जो है इसमें दो आता है, एक आता है लर नुमा आता है, एक आता है कि बगैर लर का। अगर लर नुमा में लगा रहे हैं तो उसका सीड रेट लगभग आपका 30 केजी प्रति हेक्टेयर जाएगा, अगर बगैर लर का लगा रहे हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर करीब पड़ जाएगा। और इसका औसतन उपज अगर लर वाली का है तो उसका उपज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, उसका औसतन उपज लगभग 150 से 200 क्विंटल। ये जो नॉर्मल रहता है इसका 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देता है। इस सब में अगर रोग की देखा जाए तो बोदी में क्या है कि फली छेदक बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसके लिए आप इमिडाक्लोरोपीड या कोराजन या तो क्या बोलते हैं एक आपका आता है क्यूराक्रोन, इसका आप उपयोग 1 से 1.5 ml प्रति लीटर कर सकते हैं। इसमें एक विल्ट लगता है जो कि आप जड़ कबाड़ के देखेंगे तो काला काला धब्बा नुमा पड़ता है। अगर वैसा आ रहा है तो आप क्या बोलते हैं इसमें मैंकोजेब हुआ या तो साफ आता है कार्बेंडाजेम के नाम से, उसका उपयोग कर सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर घोल के उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: सबसे बड़ी बात हमारे ग्रामीण भाइयों को देने की आवश्यकता ये है कि वो जब भी खेती करें सब्जियों की तो मचान जरूर लगा दें, उसका घेरा ये घेरान कर दें, और वो क्या बोलते हैं जिस पे लतरें चढ़ती हैं, बेलें चढ़ती हैं,
2: मचान या तो घुरान करके
1: हाँ उस पे वो चढ़ावें, हाँ उस पे ज़्यादा फसल प्राप्त करेंगे।
2: उस पे चढ़ाने से क्या है कि हमारा फसल बहुत सुरक्षित रहता है, प्लस जो हमारा फसल जो हमारा उपज आ रहा है उस क्या है कि वो साफ सुथरा एवं चमकदार रहेगा, चमकदार रहेगा तो मार्केट वैल्यू उसका हाई रहेगा।
1: तो ये बातें हो रही थी सब्जियों की खेती की, जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ अभिषेक पटेल जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और सब्जियों की खेती पर जानकारियां हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिषेक पटेल से लगी भेंटवार्ता, विषय था बरसाती सब्जियों की खेती और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब ये जानते हैं अंतर्वर्ती खेती के लाभ। जी हाँ श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती यानी इंटरक्रॉपिंग यह कृषि की वह पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलों की वैज्ञानिक तरीके से कतारों में खेती की जाती है। इस पद्धति के जो प्रमुख

अंतर्वर्ती खेती के प्रमुख लाभ है श्रोताओं, एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने से भूमि का पूरा उपयोग होता है, प्रति इकाई क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन भी होता है। सूखा, अधिक वर्षा, कीट या रोग के कारण एक फसल जो है वो प्रभावित हो जाती है तो दूसरी फसल से उत्पादन प्राप्त हो जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं आर्थिक जो जोखिम है वह कम हो जाता है। दलहनी फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करती है, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और अगली फसल को भी लाभ मिलता है। कहने का तात्पर्य श्रोताओं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होती है। खेत में कई प्रकार के फसल होने के कारण खरपतवार के बढ़ने की जगह नहीं मिल पाती है, इससे कहीं ना कहीं खरपतवार काफी हद तक नियंत्रित हो जाता है। कीट और रोगों का प्रकोप भी कम होता है श्रोताओं, कई फसल लगाने से कीट और रोगों का तेजी से फैलाव कम होता है, इससे रासायनिक कीटनाशकों की जो आवश्यकता है वह प्रायः घट जाती है श्रोताओं। अंतर्वर्ती खेती से जैव विविधता भी बढ़ती है, मिट्टी का कटाव कम होता है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता जो है वह कम होती है, तो निश्चित रूप से पर्यावरण में संरक्षण होता है श्रोताओं। तो देखा जाए श्रोताओं तो अंतर्वर्ती खेती काफी लाभकारी, टिकाऊ और वैज्ञानिक कृषि पद्धति है। इसमें भूमि, जल और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है, उत्पादन और आय भी बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरा भी बनी रहती है, कीट रोग और प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का जोखिम भी कम होता है। इसलिए किसान भाई को अपने स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार फसल का चयन कर अंतर्वर्ती खेती को बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि यह अंतर्वर्ती खेती आधुनिक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल है। तो श्रोताओं ये तो थी बातें अंतर्वर्ती खेती के लाभ, और अब चलते चलते हम आपको बता देते हैं डाल्टनगंज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा और आर्द्रता का जो प्रतिशत है वह 46 दर्ज किया गया। तो श्रोताओं अब इसी के साथ आज के इस ग्रामीण सभा से हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
3: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
3: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र, कहा सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करे कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित, दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 274 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, 768 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा विज्ञान विषय के सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करें।
1: जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया। और आज जहां 9,000-10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। सरकार की चीजों पर, सरकार की व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको कितना बेहतर कर सके इस पर हमें काम करना चाहिए।
0: झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन पर पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी 30 जून को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और उनके बेटे ने ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। गौरतलब है कि इस मामले में जांच एजेंसी ने इससे पहले 23 अगस्त 2023 को रोहित उरांव के रांची आवास स्थित 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे स्वयं 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करें। अदालत ने यह भी कहा

0: कि यदि पिछली सुनवाई के बाद इस मामले में कोई नई प्रगति हुई है तो उसकी विस्तृत जानकारी भी शपथ पत्र में उपलब्ध कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज धनबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का जायजा लिया। उन्होंने यहां निर्देश दिया है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। फर्जी दस्तावेज के जरिए नाम जुड़वाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेफ्यूज टू साइन कैटेगरी में वैसे मतदाता भी आते हैं जो दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं लेकिन भारत की मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटवाया है। विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।
1: कल से आपका एनुमरेशन फॉर्म फिल करने वाला कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पहले इंडिया में था भारत नागरिक था, यहाँ से दूसरा देश जाके वहाँ नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका नाम भी आएगा नहीं। बाहर का देश से इंडिया में आया, उनका अभी तक यहाँ नागरिकता प्राप्त नहीं हुआ, उनका नाम भी नहीं आएगा। एसआर प्रोसेस है केवल यहाँ का भारत का नागरिक के लिए।
0: जामताड़ा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई और छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान भागवत झा आजाद इंटर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्यामली फौजदार ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2: हमारे महाविद्यालय पर SIR को लेकर जागरूकता कार्यशाला एवं रैली निकाली गई। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मतदाता सूची, छात्र छात्राओं को नागरिकता के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्हें अपने तथा अपने आस पड़ोस के लोगों को SIR को लेकर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।
0: नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। CBI ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट यूजी प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जाँच कर रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची सुन रहे हैं। नक्सल संगठनों की ओर से मनाए जा रहे दमन विरोधी सप्ताह के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने ऑपरेशन ट्रैक हॉक के तहत 25 जून से चक्रधरपुर और मनोहरपुर रेलवे स्टेशनों के बीच नक्सल प्रभावित रेलखंड में ड्रोन के माध्यम से विशेष निगरानी एवं क्षेत्र प्रभुत्व अभियान शुरू किया है। आज जारी बयान में रेलवे प्रशासन ने बताया है कि विशेष सुरक्षा अभियान का उद्देश्य हर स्तर पर रक्षा सुनिश्चित करना है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और निगरानी व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाया गया है। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में अज्ञात बीमारी से आज तड़के 5वीं मौत हुई। इसके साथ ही पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रिम्स में इलाजरत कुछ अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित परिवार को इलाज के लिए 4 बार रेस्क्यू किया गया। वहीं मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर आरके रंजन ने बताया कि सभी मृतकों के विसरा को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। धनबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने भूली बाईपास रोड स्थित एक मैरिज हॉल को अवैध निर्माण घोषित करते हुए इसे तोड़ने का आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने जानकारी दी कि निगम ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।
3: हम लोगों ने उनको 15 दिन का टाइम दिया हुआ है कि वो स्वतः उसको डिमोलिश कर लें, और अगर 15 दिन में स्वतः डिमोलिश नहीं करते हैं

0: और जो एक दूसरा है कि 10 लाख रुपए का फाइन जो लगा है, अगर वो नहीं करते हैं उसके बाद हम लोग उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करें। बाकी अदर अपील कर सकते हैं, वो कोर्ट्स में जाके अपील कर सकते हैं, पर ये उनको प्रॉपर 2 महीने का प्रॉपर टाइम दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई।
1: पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। धनबाद के जगन्नाथ मंदिर में आज धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की स्नान यात्रा पवित्र जल से संपन्न होने के साथ ही वे 15 दिनों के लिए अज्ञातवास में चले जाएंगे। इसके बाद 16 जुलाई को धार्मिक विधि विधान के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी।
2: सुबह सेवा जैसे पूजा के बाद भगवान ने रत्न सिंहासन छोड़कर अपना स्नान मंडप में 108 घड़ा जल से और सुगंध से स्नान करेंगे। 5 बजे के बाद अज्ञातवास जाएंगे। 15 तारीख को नेत्र उत्सव बना जाएगा और 16 तारीख को रथ यात्रा होगा।
1: मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करें कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित। दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले के सभी 2403 बूथों पर पल्स पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई गई। डीसी रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बजटो गांव में बच्चों को दो बूंद दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। सिविल सर्जन ने बताया कि 29 एवं 30 जून को घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी 4,91,000 से अधिक बच्चों को पोलियो मुक्त भारत के लिए दवा पिलाएंगे।
2: एनआईडी के तहत गिरिडीह जिले में दिनांक 28 से 30 तारीख तक पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाएगी। 28 तारीख को जो हमारे बूथ हैं गिरिडीह जिले के, टोटल जो बूथ है 2,337 बूथ, उस पर बच्चों को जो 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन जो अभी बीओपी

0: बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की दो बूंद दवाइयां दी जाए। 29 और 30 तारीख एक कार्यक्रम डोर टू डोर किया जाए।
1: भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पाकर गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भंडारीडी की रजिया इस्लाम और उनके पति इस्लाम कहते हैं कि सरकार ने उन्हें गैस, अनाज, आवास सब कुछ दिया है।
2: मेरा नाम इस्लाम है। फ्री चावल दे रहा है, गैस तो मिल ही रहा है, सरकार से हम बहुत खुश हैं।
3: मेरा नाम रजिया इस्लाम। कोयला काट के जलाते थे, अब गैस मिल गया तो गैस से आराम हो गया। खाना बना के दे देते हैं टिफिन जल्दी जल्दी करके, धुआं से धक्का से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं। घर दिया है, गैस दिया है, तो सरकार को धन्यवाद देते हैं।
1: गिरिडीह जिले के पीरटाल प्रखंड की महिलाएं मोटे अनाज से मिठाई बनाकर बेच रही है। इस काम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रही है।
4: मैं यहाँ की एक किसान हूँ और हम लोगों का जो मुख्य फसल हुआ करता था गांव का, वो धान उगाते थे चावल के लिए। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ मड़ुआ का बहुत अधिक उत्पादन हो रहा था और उस उत्पादन के बाद हम लोग क्या करते थे, मड़ुआ को डायरेक्ट बाजार में ले जाके सेल कर दिया करते थे। लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ एक रुद्रा फाउंडेशन नाबार्ड के द्वारा बहुत बढ़िया प्रशिक्षण दिया जा रहा है मड़ुआ से अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने का, जैसे कि मड़ुआ की बर्फी, मड़ुआ के लड्डू, मड़ुआ का केक, निमकी। इसी तरह बाजरे से भी अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है बनाने का, तो हमारे कौशल का भी विकास हो रहा है।
1: गिरिडीह जिले के किसान अशोक वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें प्रारंभ से मिलते रहा है। इस राशि से उन्हें खेती करने में आसानी होती है।
5: अशोक वर्मा, पंचायत पांडेडी, प्रखंड गिरिडीह, जिला गिरिडीह का एक किसान हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे साल भर में 2-2 हजार रुपया करके शुरुआत से ही मिलते आ रहे हैं। 21वां किस्त भी मिला है और इस पैसे से हम किसान वर्ग खेती कार्य के लिए खाद, बीज व अन्य उपकरण का में खर्च करते हैं और इससे हम सभी को लाभ भी मिला है।
1: गिरिडीह जिले में पुलिस प्रशासन और आम लोगों की तत्परता से मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने शांति समिति की थाना से लेकर जिला स्तर तक की बैठकें की थी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
6: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ही डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगा हर्ट्ज पर। आप लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, कैसे हैं? बुनियाद कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आ गया आप सबों के घर आंगन में। अभी तक फोन कॉल आ रहे हैं, हमने बातें ही ऐसी की थी कि फोन कॉल लगातार आ रहे हैं। बीएड की बातें की थी और बीएड इंटीग्रेटेड स्पेशल बीएड की बातें की थी, जो 4 साल का कोर्स होता है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। आज उसके अगले हिस्से को हम लेकर आए हैं। ढेर सारे सवाल आए हैं, जिसमें एक सवाल ये कॉमन है कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके बारे में फिर से एक बार बता दिया जाए। जरूर बताएंगे, ये कार्यक्रम है आपके लिए।

0: हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं जानकारियां पहुंचाने के लिए। थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि जिन्होंने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके फोन कॉल्स आते हैं और उससे भी अच्छा लगता है जब आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं देखने के लिए। एक आध बार मुलाकात हो गई है कुछ लोगों से हमारी भी, भला आप ही राजेश जी हैं, हमने कहा जी अच्छा लगता है सर, थैंक यू। तो अब थैंक यू, आभार, अभिनंदन आपका करना चाहते हैं कि आप हम पर इतना विश्वास करते हैं। बहरहाल टेक्निकल पढ़ाई की बातें हम लगातार कर रहे हैं कि टेक्निकल पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपने पैरामेडिकल की पढ़ाई की तो पैरामेडिकल के अंदर में टेक्नीशियन हो सकते हैं, ओटी असिस्टेंट हो सकते हैं, आप रेडियोलॉजी में जा सकते हैं, इसके अलावा फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, आप नर्सिंग में जा सकते हैं, एएनएम और जीएनएम बन सकते हैं, आप फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा या फार्म डी कर सकते हैं, या जर्नलिज्म में जा सकते हैं, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं, बीबीए मैनेजमेंट के साथ लॉ, बीए के साथ लॉ, बीएससी के साथ लॉ, अगर आप 3 साल वाला भी लॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म कर सकते हैं, लाइब्रेरी में किताबों से आपको बहुत प्यार है तो किताब के रख रखाव के लिए एक पढ़ाई होती है लाइब्रेरी साइंस, आप उसमें जा सकते हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बार फिर से डॉक्टर अवनीश रंजन से जो पुनर्वास विभाग में डीन है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, और हम स्पेशल की बात करते हैं, चैलेंज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नंबर बताए देते हैं, नंबर नोट कर लें, नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005। और दूसरे कोर्स के बारे में भी या यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में अगर आप जानकारियां चाहते हैं तो www.gnsu.ac.in ये वेबसाइट का पता है, आप यहां जा सकते हैं। बहरहाल हाँ, एक जानकारी और ये है कि अगर पैसे की समस्या है ना तो 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जो बिहार सरकार देती है, इससे भी बहुत सारे कोर्स किए जा सकते हैं। आप पता लगाइए और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आ जाइए, या ये जो नंबर है 9431899002 या 1800121005 पर पूछ लीजिए। बहरहाल डॉक्टर अवनीश रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़े में।
1: मैं डॉक्टर अवनीश रंजन और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के डीन के पोस्ट पे हूँ, और हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 कोर्सेज अभी संचालित हो रहे हैं इस फैकल्टी से, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन हैं, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता, ये 2 में हमारे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 4 साल वाले चल रहे हैं।
0: चलिए, एक सवाल जो आपने पिछले सप्ताह बताया था उसमें एक बार फिर से ये बताने की बात कही गई है कि जो प्लेन बीएड 2 साल का ग्रेजुएशन के बाद होता था, और जो इंटीग्रेटेड बीएड है जो इंटर के बाद 4 साल का होता है, और जो स्पेशल शब्द जुड़ा है जिसमें, उसके बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, फिर बातों को हम आगे बढ़ाएं।
1: बीएड का ये मतलब है कि बच्चे तभी एडमिशन लेते हैं जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब 3 साल के कोर्सेज हैं। कई बार यूनिवर्सिटी लेट होने के कारण, एग्जामिनेशन लेट होने के कारण 4 साल 5 साल भी लड़कों को लगते हैं, उसके बाद फिर 2 साल का बीएड करना होता है और तब आप टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन ये जो नया बीएड आया है इंटीग्रेटेड बीएड, जिसको इजी टेप बोलते हैं, कई लोग आप जानते होंगे एनसीटी जो नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल है, उनके द्वारा भी आईटेप चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी इंटीग्रेटेड बीएड ही है, वो 4 साल का वो भी है। वहां पे जनरल बीएड की पढ़ाई होती है और हमारे यहाँ स्पेशल बीएड की पढ़ाई होती है। अब स्पेशल ये है कि अभी जो कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने या आईसीएसई बोर्ड ने या स्टेट बोर्ड ने ये कंपलसरी किया है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर को की का अपॉइंटमेंट जरूरी है, ये कंपलसरी हो गया है। और आप देखे होंगे पिछले 6 महीने के अंदर में सेंट्रल स्कूल जो है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार

0: सरकार और नवोदय विद्यालय संगठन भारत सरकार, इसके द्वारा देश के स्तर में वैकेंसी निकाली गई हर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में। साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने, और खासकर बिहार की बात हम करें तो बिहार ने बीपीएससी, जो बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन है, वहां से भी वैकेंसी टीचर की आई और 29 जनवरी को ही करीब 7,500 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी जिसका रिटन टेस्ट हुआ है और उसके बाद वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के रूप में वो अपॉइंट हो जाएंगे। तो वो जो डिग्री है जिसके बेस पर वो बीपीएससी की परीक्षा देंगे या सेंट्रल स्कूल या नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करेंगे, वो यही इंटीग्रेटेड बीएड है या यही बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। डॉक्टर अविनीश से हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अविनीश, आप ये पढ़ाई करके चाहे जहां के रहने वाले हों, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा या फिर और भी गोड्डा के रहने वाले हों या फिर आप डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, कहीं भी आप ये पढ़ाई करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, समाज की भलाई भी कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा?
0: मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है वो एक रूरल एरिया में हमारा यूनिवर्सिटी है और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर भी हम लोग कैंपस के अंदर में इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर हमारे यहाँ चलते हैं जो इस तरह के बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी थेरेपी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हमारे सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है। और आप जैसे लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, करने के बाद आप सक्षम ऐसे होंगे कि आप ऐसा सेंटर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में खोल पाएंगे। आप उनको तो सर्विस देंगे ही, एक बहुत ही नोबल सर्विस है, वो तो आप देंगे ही, साथ साथ आप एक अच्छी अर्न भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे जो आज बॉम्बे में जाके, दिल्ली में जाके, बड़े शहर में जाके इलाज करा के लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो तो बच्चों का क्या होगा कि अपने पेरेंट्स के साथ भी रह पाएंगे और आपके यहाँ थेरेपी होगी तो आपका भी एक अच्छे से धनोपार्जन होगा और आप एक सोशल सर्विस के साथ साथ अपनी जीवन को का भी आपन भी अच्छे से कर पाएंगे।
1: एक बात और बताइए, हाँ, कि ये जो कोर्स है ना इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन का, ये सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में हो रहा है या बिहार के और भी किसी हिस्से में हो रहा है, विश्वविद्यालय में हो रहा है, इसकी भी जानकारी भी हमें दे दीजिए, युवा साथियों को होनी चाहिए।
0: वर्तमान में झारखंड और बिहार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ही है जहां पे ये पिछले साल से ये कोर्स शुरू किया गया है और भारतीय पुनर्वास परिषद ने इन्हें दो कोर्स, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के दो कोर्सेज के लिए मान्यता दी है और अगले 5 साल तक के लिए ये मान्यता है। और यूपी में एक आध जगह कहीं शुरू हुआ है, वो भी बहुत ही छोटे स्तर पे भी अभी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपके ही राज्य में एक बड़ा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
1: अच्छा एक बात बताइए, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल में बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज, हाँ, ये सारे उपलब्ध हैं, इसका मतलब क्या है?
0: ये ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी, मतलब कि आप ग्रेजुएशन भी आपका होगा, मतलब अगर आप बीए करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। साथ साथ इसी ड्यूरेशन में, मतलब 4 साल के ही अंदर में, आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के भी पढ़ाई को करके उसकी भी डिग्री ले पाएंगे। मतलब ये ड्यूअल डिग्री है, आप दो कोर्स एक साथ कर रहे हैं और एक ही पीरियड में आपको दो तरह की डिग्री मिल जाएगी।
1: अच्छा चलिए, आपके यहाँ जैसा कि आपने इस सवाल के पहले जवाब दिया कि संभवतः ये सिर्फ आपके यहाँ ही शुरू किया गया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो अपने बारे में बताइए कि क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, हाँ, क्या एक नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है कि नहीं है?
0: इस कोर्स को शुरू करने से पहले भारतीय पुनर्वास परिषद में हम लोगों ने जब अप्लाई किया था एफिलिएशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, तो एक उनका एक अपना नॉर्म्स है कि कितने टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम कैसे हो, लाइब्रेरी कैसे हो, आप हम लोगों के साथ एक स्कूल अटैच हो जहां पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को हम लोग भेज सकें, तो ये सब कुछ के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम लोगों ने अप्लाई किया था। वहां से हम लोगों के टीम एक आई, इंस्पेक्शन हुई, एक प्रोफेशनल्स की टीम आई थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोगों को ये रिकॉग्निशन मिला कि आप इस कोर्स को चला सकते हैं। और ये चूंकि हमारा कैंपस करीब करीब 100 एकड़ में है और इसमें और भी कई दूसरे कोर्सेज भी हमारे यहाँ चलते हैं, तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हमारे यहाँ टीचिंग की क्वालिटी को लेके, हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा माहौल है, जिसके का रिकॉग्निशन हमारी कई जो सेंट्रल जो काउंसिल्स हैं उन्होंने दिया है अलग अलग कोर्सेज के लिए। उसी तरीके से भारतीय पुनर्वास परिषद ने के मानक पे हम लोग खड़े उतरे हैं, जिसके कारण हमको ये मान्यता मिली है।
1: बहुत खूब। हाँ, डॉक्टर अवनीश रंजन, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और क्या कहना चाहते हैं चलते चलते लोगों से,
0: युवाओं से अपील है हमारी कि आप ये इस कोर्स को एक बार समझिए, एक बार देखिए, एडमिशन लीजिए। आप अगर आप ग्रेजुएशन, आपका अगर प्लान है कि आगे जाके आपको टीचर बनना है या आगे आपको जाके ऐसे काम को करने हैं जिसमें कि आपकी अच्छी अर्निंग भी हो, आप सोशल सर्विस भी कर पाएं और आपका रिकॉग्निशन सोसाइटी भी अच्छा बने, तो आप तीनों आप अगर इस कोर्स को करेंगे तो तीनों आपके जो नीड है या आपके तीनों जो आपके जो ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे। क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि 4 साल के अंदर में आप जब पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी आपके दरवाजे खड़ी होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी इसमें है और लोग कम है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूं कि अभी जो जस्ट 29 जनवरी को परीक्षा हुई है बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, तो 7500 सीट थे और करीब करीब 6500 से 7000 ही कैंडिडेट अपीयर हुए उसमें। तो आप ये अंदाज लगाइए कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो अगर जो लोग जितनी जल्दी इस फील्ड में आएंगे उनका नौकरी उतना ज्यादा श्योर है, क्योंकि अभी सारी जगह वैकेंसीज हैं, सब जगह खाली सीट है, तो आप आएंगे तो आपको एक अच्छा चांस मिलेगा।
1: थैंक यू डॉक्टर अवनीश रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, एकदम नया कोर्स है, सीट भी कम है, हाँ बहुत ज्यादा सीट नहीं है, इशारा समझिए। अगर जो आप चाहते हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल का, वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है और संभवतः अपने बिहार झारखंड में पहली दफा ये कोर्स आया है बहुत ही लिमिटेड सीट के साथ, आप चाहे तो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 9431899002 9431899002 और एक टोल फ्री नंबर है 1800121001 और एक वेबसाइट का पता भी है www.gnsu.ac.in। इसमें जितने तरीके के 13-14 तरीके के टेक्निकल पढ़ाई कराए जाते हैं सारी की जानकारियां आपको मिलेंगी। फिलहाल थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि उन्होंने ये कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अखियों के झरोखों से, इस फिल्म के गीत से। आवाज़ हेमलता की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आपने सुना इस फिल्म का गीत हेमलता की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अनुराग फिल्म से। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है एस डी वर्मन ने।

0: लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। आइए श्रोताओं इस कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष जो कि रांची के हैं, उनसे ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता विषय अनिंद्रा कारण और उपचार। इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: आजकल की भागम भाग जिंदगी में हर तरफ हम तनाव से घिर जाते हैं। हमें चारों ओर सिर्फ अपना काम दिखता है और काम के बोझ के तले हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं और ऐसे में हम भूलते हैं पर्याप्त समय अपने नींद के लिए। सही समय पर हम सो नहीं पाते हैं, सही समय पर हम उठ नहीं पाते हैं और कितना हमें समय सोने के लिए देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। होता क्या है, हम थकान महसूस करते हैं और तनाव से घिर जाते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारा अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस। तो एक व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है क्या कारण है इसका और कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष।
2: नमस्कार,
1: स्वागत है डॉक्टर साहब। अनिद्रा एक कॉमन बीमारी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। लोग सही से सो नहीं पाते हैं, बहुत लोग गोलियों का सहारा लेते हैं जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए कितना घंटा व्यक्ति को सोना चाहिए?
2: अनिद्रा या इंसोमनिया, इसको हमारे मेडिकल भाषा में या अंग्रेजी में कहते हैं इंसोमनिया, नींद ना आना। इसमें इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको उनिदापन कहते हैं या निंद्रा लोप भी कहते हैं या निंद्रा अभाव भी कहते हैं। ये सारे नींद नहीं आने के अलग अलग नाम हैं। हम सब जानते हैं अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है शांतिपूर्ण नींद ही स्वास्थ्य का आधार है। हम लोग तकनीकी बहुत तरक्की कर गए हैं, अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये तकनीकी तरक्की किस कारण हुई? अपना स्वास्थ्य और नींद को गंवाकर। तो ऐसी तरक्की क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं। किसी कारण भी अपना स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने पूछा कितने घंटे सोना चाहिए, जब शिशु या बच्चा जन्म लेता है तो देखते हैं मैक्सिमम समय वो सोए रहता है 18 से 20 घंटा, सिर्फ खाने के लिए, थोड़ा देर के लिए पीने के लिए उठता है फिर सो जाता है। तो उन लोग 18 से 20 घंटे सोते हैं। क्यों सोते हैं? उस सोने के दौरान में उनका मानसिक विकास होता है। तो हमारे यंग लोगों में, बड़े लोगों में सोना कम से कम 6 से 10 घंटे सोना जरूरी है। कहते हैं 8 से 10 घंटे सोए तो आपका शरीर का संपूर्ण विकास होगा, शरीर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी और शरीर अपने हीलिंग की ओर, अच्छे की ओर, स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेगा। किसी किसी लोगों में देखा जाता है 6-7 घंटे भी सो के स्वस्थ रहते हैं। ये इंडिविजुअल वेरिएशन है, कई लोगों को 8 से 10 घंटे, तो ऑन एन एवरेज कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए या कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो भरपूर नींद लेना ही चाहिए, वरना आप बहुत सारे मानसिक रोगों के शिकार आगे चल के हो सकते हैं।
1: सही से नींद हम नहीं निकाल पाते हैं, सही से हम सो नहीं पाते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है?
2: पहले हमको जानना है कि नींद नहीं आने के मरीज कैसे आपको लक्षण लेके आएंगे। कुछ लोग पढ़ें कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे नींद शुरू में नहीं आती है, लेकिन एक बार सो जाता हूँ तो ठीक से आती है। कई लोग कहता हूँ सो तो जाता हूँ सर, लेकिन रात में बीच में उठ पाता हूँ, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं नींद को। कई लोग सो भी जाते हैं, कुछ हद तक मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर सुबह उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो नींद नहीं आने के ऑनसेट मेंटेनेंस और तुरंत उठने की बीमारी होती है। कई लोग इसके बाद कहते हैं सर मैं पूरा सोता हूँ फिर भी हमको थकान महसूस होती है। ये सब इंसोमनिया के ही लक्षण में आते हैं जो मरीज आके शिकायत करता है। मरीज शिकायत करने के बाद अगर ये नहीं, अगर इसका ध्यान दिया जाए तो ऐसे मरीज एंग्जाइटी और डिप्रेशन और तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इन सब के निदान के लिए आपको चिकित्सक परामर्श लेने की अत्यंत आवश्यकता है।
1: कुछ व्यक्ति स्वतः ही दवा लेकर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, वो कितना हद तक जायज़ है?
2: ओवर द काउंटर मेडिसिन सरासर गलत है, खासकर नींद की मेडिसिन ना लें। अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छे दुकान वाले कभी भी किसी मरीज को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद के दवा नहीं देती है। ऐसा नहीं मेट्रो में, ऐसा अपने झारखंड में भी कई दुकान पे जाइए, आप मांगिए, आपको नींद की दवा नहीं देगी। नींद की दवा लेना क्यों जरूरी है? अगर कोई आदमी प्रॉपर तरीके से सोता नहीं है तो कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। तो कभी कभी किसी को शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, थोड़े दिन के लिए अनिंद्रा, जो दिनों से दो तीन हफ्तों तक रहता है, दीर्घकालीन अनिंद्रा जो क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं, जो महीनों सालों भर रहता है। तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया जो साइकिल चेंजेज, किसी का ड्यूटी शिफ्ट हो गया, प्लेन से एक जगह से इधर गए, जेट लैग हो गया, जिसमें शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होते, कुछ इन्फेक्शन के कारण हो गया, कभी किसी को चोट लग गई, पेन के कारण हो गया, तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया उपचार करने से स्वतः दूर हो जाती है। लेकिन क्रोनिक जो दीर्घकालीन इंसोम्निया होती है, उसमें लगातार अगर वर्क शिफ्ट हो गया, उसमें कभी अच्छी नींद आ रही, कभी ख़राब नींद आ रही, कभी अच्छी, तो साल भर उसको नींद की साइकिल डिस्टर्ब रहती है, जिसको वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ स्लीप कहते हैं, जिसके मल्टीपल कारण है, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्यतः नेजल एलर्जी, साइनोसाइटिस, अगर नाक का इन्फेक्शन रहा, GI रिफ्लेक्सेस हुए, हाइपरथायरॉइड के मरीज को, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मरीज को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पार्किंसनिज, ज्वाइंट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, सांस के मरीज को, और कुछ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर में भी नींद की, क्रोनिक नींद की प्रॉब्लम होती है। तो

0: साथ लाइट नहीं रखते हैं, ज़्यादा लाइट रखते हैं, शोर शराबा रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हैं, टीवी चलते रहेगा, ऐसे माहौल में नींद नहीं आएगा। कई लोग सोने से पहले नहा लेते हैं तब भी नींद नहीं आएगा, चाय कॉफ़ी धूम्रपान का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब भी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो इन सब से हम बचें। कभी कभी रात में अगर 20 मिनट से ज़्यादा नींद टूट गया, उठ गए, तो अपने माइंड को डिस्ट्रक करें, दूसरे चीज़ में लगाएं, कुछ पढ़ने लगे नहीं लगे, कुछ क्रिएटिव वर्क करने लगे, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आपको नींद स्वतः आ जाएगी। तो ये सब बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंज करके हम अपने एंग्जाइटी को और नींद की समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, तनाव का नींद से गहरा संबंध है। कहते हैं किसी व्यक्ति को तनाव हो गया या हम तनाव से घिर जाते हैं तो रातों की नींद हराम हो जाती है। तो ऐसे समय व्यक्ति क्या करे, किस तरह के उपाय अपनाए, क्या क्या जतन करे वो कि उसको सही से नींद आए।
0: आपने सही समय पूछा। आज की समस्या तनाव और स्ट्रेस की समस्या है। दिन चूहे की दौड़ है, हम लोग 99 के चक्कर में भागे जा रहे हैं। ये चक्कर कब ख़त्म होगा पता नहीं, यही तनाव को जन्म देता है। तो अपने लाइफ का उद्देश्य और कार्य को निश्चित करें और बहुत ज़्यादा आगे पीछे दौड़े नहीं, और योगा और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, आउटडोर एक्टिविटीज़, मतलब कहने का है शारीरिक परिश्रम करें, जिससे कि आपको थकान होगी और खुद नींद आएगी। और सोने का जगह जैसे मैं बताया, शांत और आरामदायक वातावरण रखें जिससे नींद आए। और जो भी चीज़ आपको एंग्जाइटी करती है उससे दूर भागें, उससे बचें, उसमें इन्वॉल्व नहीं हों। अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो चिकित्सक से परामर्श रह के उसके अनुरूप हर को अलग अलग तरह की दवाई दी जाती है, जो आप दवा का सेवन कुछ दिनों तक कम मात्रा कम डोजेज में आप प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, रात्रि के भोजन के कितने समय उपरांत व्यक्ति को शयन कक्ष में चला जाना चाहिए?
0: रात्रि के भोजन के 1 से 2 घंटे के भीतर आपको शयन कक्ष में चले जाए। तुरंत इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो फूड मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। उसके आधे घंटे बाद आपने सोने के बेड पे चले जाए, जो बेड आरामदायक रहे। ऐसा नहीं रहे कि बेड गंदा रहे, सामने टीवी चलता रहे, लाइट जलता रहे, कम वातावरण में, जिसको जैसा सुचार, किसी को कम लाइट रहती, किसी को बिल्कुल लाइट नहीं पसंद नहीं रहती है, उस वातावरण बना के जिसको स्लीप हाइजीन कहते हैं मेंटेन करके आप धीरे धीरे सो सकते हैं। एक अंग्रेजी में लाइन है, इफ़ यू कैनॉट स्लीप यू कैनॉट हील। अगर आप सोएंगे नहीं तो स्वस्थ और हील नहीं होंगे, इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को ध्यान दें, डाइट को ध्यान दें, गलत आदतों से बचें और सही नींद लें, और आप सही लंबी आयु को प्राप्त करेंगे अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे।
1: हम तनाव से दूर रहें और सही वक्त पर हम यदि सो जाते हैं और पर्याप्त समय यदि हम अपनी नींद को देते हैं तो हमारे कार्य क्षमता में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम अधिक समय तक काम कर पाएंगे और जो भी हम कार्य करेंगे वो दक्षतापूर्वक हम कर पाएंगे।
0: बिल्कुल सही।
1: डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

अनिद्रा कारण और उपचार, इस विषय पर अभी आपने सुना रांची के डॉक्टर सुंदरम श्रीहर से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। इसी भेंटवार्ता के साथ कल्याणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। हमारा अगला प्रोग्राम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं प्रेम रोग इस फिल्म के गीत से। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की है। गीत के बोल संतोष आनंद के हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी।

0: होगी हमारी जी और टीबी की हाल।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अगला गाना हमने लिया है राज फिल्म से, आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक की है, गीत केवल समीर के हैं, संगीत दिया है नदी।

अब आइए सुनते हैं अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में सड़क फिल्म का ये गीत। गीत के बोल सुरेंद्र साथी के हैं, संगीत दिया है नदीम शौर ने।

मुझसे शादी करोगी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। जली शेरवानी के बोल थे और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। अब आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, संगीत दिया है नदीम।

अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म अंदाज का ये गीत। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अंदाज फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल समीर के थे, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं धड़कन फिल्म का ये गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह

0: अब संरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। संरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में

आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकार

0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले चार वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति

0: against Su Liyang of Chinese Taipei. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अता किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में कहीं कहीं शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज शाम मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब के दूसरे मरहले में दिफाई अफवाज और भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते के अहलकारों को बहादुरी एजाजात अता किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर मरकजी वजरा पेश है। एक रिपोर्ट।
2: सदर जमहूरिया ने इस तकरीब में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स, 30 परम वशिष्ठ सेवा मेडल्स, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 56 अति वशिष्ठ सेवा मेडल्स अता किए। अति वशिष्ठ सेवा मेडल पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। इसी तरह वाइस एडमिरल संजय वसायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष विशिष्ट सेवा मेडल अता किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोबती शामिल हैं। ये एजाजात मस्कुरा एहलकारों को उनकी गैर मामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोजा सेशल्स का दौरा निहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर उस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पीस पार्क में नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वीं योम आजादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी, हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम बन गए हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन यूपीआई

0: BWF के खिताब के लिए श्रीकांत के इंतजार को और बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने 2017 में BWF सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अलाक्वामी खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्द तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी।
1: मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम।
2: Thank you.

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जैसे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं, एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है, उसकी इच्छा होती है गाने की, तो वो अपनी आवाज़ में गाता है। लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था। तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ। तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे, और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा।

से तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं दो दिलों की दास्तां इस फिल्म के गीत से। आवाज़ें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की है। गीत के बोल अनजान के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे।

ईमानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की आवाज़ों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। अब आइए सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल की रचना, आवाज़ सलमा आगा की है और फिल्म का नाम है निका।

स्वयंवर फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गुलजार के बोल थे, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में एक बार फिर से। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है धरती।

पाकीज़ा फ़िल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, कमाल अमरोही के बोल थे, संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने। अब आइए सुनते हैं अभिमान फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने ही। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है SD वर्मन।

प्यासा सावन, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। संतोष आनंद के बोल थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में सौदागर फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन।

असली नकली, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोलते संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में तुम्हारे लिए इस फिल्म से। नक्शलाल पुरी के बोल हैं, संगीत जयदेव का।

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा की।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार

0: कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
1: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Harmeen, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aparajita Snatak, Akashvani News, Delhi.
2: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 260,000 crore rupees. This undertaking shows the center's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyze institutional capital into the country. The West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly today. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for anti-social activities which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle EV policy set for a phased 4-year rollout starting from 1st of next month. India today strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. The MET also further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the Women's T20 competition. And that's the end of the news.
4: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।